मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़, DRM, DTH, OTT वेब और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं।

0: भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। जमीन में उपलब्ध अधिकांश पोषक तत्वों का क्षय फसल उत्पादन द्वारा होता है, लेकिन विभिन्न फसलें एवं उनकी प्रजाति एक निश्चित मात्रा तक ही उनको ग्रहण करती हैं। कुछ फसलों में उर्वरक ग्रहण करने की क्षमता बहुत नगण्य होती है या उदासीन होती है। ऐसी फसलों में उर्वरक देने का लाभ बहुत ही कम होता है। फसलों की जड़ प्रणाली भी उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। जिन फसलों की जड़ें मूसला होती हैं उनमें उर्वरक मिट्टी की सतह पर न देकर कुछ गहराई में देना चाहिए। छिछली जड़ वाली फसलों में उर्वरक मिट्टी के ऊपरी सतह पर दिए जाते हैं। यदि घनी फसल है तो उसमें कम मात्रा उर्वरक की डालने पर पौधों को कम मात्रा में उर्वरक मिल पाता है तथा ग्रहण करने में प्रतिस्पर्धा रहती है। यदि विरली फसल है और उर्वरक की अधिक मात्रा प्रयोग की गई है तो खाली स्थान पर पड़े उर्वरक का कोई उपयोग नहीं हो पाता। अतः इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक वर्ष में यदि ज़्यादा फसलें लेते हैं तो अधिक एवं यदि एक वर्ष में कम फसलें लेते हैं तो कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरकों के प्रभावशाली उपयोग में फसल चक्र का बहुत महत्व है। अच्छे फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश होता है जिससे कम उर्वरक से भी अधिक पैदावार मिलती है। जिन फसलों में खरपतवार अधिक होते हैं उसमें उर्वरक का अधिकांश भाग खरपतवारों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है जिससे मुख्य फसल को उर्वरक कम मात्रा में मिलते हैं तथा उपज कम हो जाती है और उर्वरकों का व्यापक नुकसान होता है। अतः उर्वरकों का पूरा फायदा लेने के लिए खरपतवारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फसल की बुआई का समय भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता है। यदि समय पर फसल की बुआई करते हैं तो कम उर्वरक से भी अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत समय पर बुआई न करने से अधिक उर्वरकों के प्रयोग से भी अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं हो पाती है।

0: अधिक विलंब से बुआई करने पर उर्वरक का अधिकांश भाग फसल के लिए लाभकारी नहीं रहता है। खेत की तैयारी में उर्वरक के समुचित उपयोग का अपना महत्व है। अच्छी तैयार भूमि में फसलों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है तथा जल्दी ही जड़ें उर्वरक को घोल के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। इसी तरह यदि भूमि की तैयारी अच्छी तरह न की जाए तो पौधों की जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है तथा पर्याप्त उर्वरक का उपयोग फसलों के लिए नहीं हो पाता है और अधिकांश पोषक तत्व बेकार हो जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं विषय पर कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: Akashvani at 90.
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है।

मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है।

ईश्वर वो शक्ति है जो हमें तब भी संभालती है जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन हर मुश्किल समय में किसी न किसी रूप में हमारे साथ खड़े रहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आज के गायक कलाकार थे संजय तलवार, अनुजा बिसारिया, रूप कुमार राठौर और ओम व्यास। ये आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा, सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 131वीं कड़ी।

अब नए बसे हुए और भीतरी और बाहरी तूफानों से उबरे हुए आश्रम को छोड़कर यहाँ गिरमिट प्रथा पर थोड़ा विचार कर लेने का समय आ गया है। गिरमिटिया यानी वे मजदूर जो 5 वर्ष या इससे कम की मजदूरी के इकरारनामे पर सही करके हिंदुस्तान के बाहर मजदूरी करने गए हों। नेटाल के ऐसे गिरमिटियों पर लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर सन 1914 में उठा दिया गया था, पर गिरमिट की प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई।

सन 1916 में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने ये प्रश्न धारासभा में उठाया था और लॉर्ड हार्डिंग ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके घोषित किया था कि समय आने पर इस प्रथा को नष्ट करने का वचन मुझे सम्राट की ओर से मिला है। लेकिन मुझे तो स्पष्ट लगा कि इस प्रथा को तत्काल ही बंद करने का निर्णय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अपनी लापरवाही से बरसों तक इस प्रथा को चलने दिया है। मैंने माना कि अब इस प्रथा को बंद कराने में जितनी जागृति लोगों में आ गई है, मैं कुछ नेताओं से मिला, कुछ समाचार पत्रों में इस विषय में लिखा और मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथा को मिटा देने के पक्ष में है। क्या इसमें सत्याग्रह का उपयोग हो सकता है? मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं थी, पर इसका उपयोग कैसे किया जाए ये मैं नहीं जानता था। इस बीच वायसराय ने समय आने पर शब्दों का अर्थ समझाने का अवसर खोज लिया। उन्होंने घोषित किया कि दूसरी व्यवस्था करने में जितना समय लगेगा उतने समय में ये प्रथा उठा दी जाएगी। अतः सन 1917 के फरवरी महीने में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने गिरमिटिया प्रथा सदा के लिए समाप्त कर देने का कानून बड़ी धारासभा में पेश करने की इजाजत मांगी तो वायसराय ने वैसा करने से इनकार कर दिया। अतः इस प्रश्न के संबंध में मैंने हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया। भ्रमण आरंभ करने से पहले मुझे वायसराय से मिल लेना उचित मालूम हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे मिलने की तारीख भेजी। उस समय के मिस्टर मेफी अफसर जॉन मेफी उनके मंत्री थे। मिस्टर मेफी के साथ मेरा अच्छा संबंध स्थापित हो गया। लॉर्ड चेम्सफर्ड के साथ संतोषजनक बातचीत हुई। उन्होंने निश्चयपूर्वक तो कुछ न कहा, पर मुझे उनकी मदद की आशा बंधी। भ्रमण का आरंभ मैंने मुंबई से किया। मुंबई में सभा करने का जिम्मा मिस्टर जहांगीर पिटीट ने अपने सिर लिया। इम्पीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन के नाम से सभा हुई। उसमें पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने के लिए समिति की बैठक हुई। उसमें डॉक्टर रीड, सर लल्लू भाई श्यामल दास, मिस्टर नटराजन आदि थे। मिस्टर पिटीट तो थे ही, प्रस्ताव में गिरमिट प्रथा बंद करने की विनती करनी थी। प्रश्न ये था कि वो कब बंद की जाए। तीन सुझाव थे, जितनी जल्दी हो सके, 31 जुलाई तक और तुरंत। 31 जुलाई का मेरा सुझाव था। मुझे तो निश्चित तारीख की जरूरत थी ताकि उस अवधि में कुछ न हो तो ये सोचा जा सके कि आगे क्या करना है या क्या हो सकता है। सललू भाई का सुझाव तुरंत शब्द रखने का था। उन्होंने कहा 31 जुलाई की अपेक्षा तुरंत शब्द अधिक शीघ्रता सूचक है। मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि जनता तुरंत शब्द को नहीं समझ सकती। जनता से कुछ काम लेना हो तो उसके सामने निश्चयात्मक शब्द होना चाहिए। तुरंत का अर्थ तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। सरकार उसका एक अर्थ करेगी, जनता दूसरा। 31 जुलाई का अर्थ सब एक ही करेंगे और इस तारीख तक मुक्ति न मिली तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए सो हम सोच सकेंगे। ये दलील डॉक्टर रीड के गले तुरंत उतर आई। अंत में सर लल्लू भाई को भी 31 जुलाई पसंद आई और प्रस्ताव में ये तारीख रखी थी। सार्वजनिक सभा में ये प्रस्ताव पेश किया गया और सर्वत्र 31 जुलाई की सीमा अंकित हुई। मुंबई से श्री जायजी पिटीट के अथक परिश्रम से स्त्रियों का एक डेपुटेशन वायसराय के पास पहुंचा। उनमें लेडी ताता, स्वर्गीय दिलशाद बेगम आदि महिलाएं थीं। सब बहनों के नाम तो मुझे याद नहीं है, पर इस डेपुटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और वायसराय ने उन्हें आशाजनक उत्तर दिया था। मैं कराची, कलकत्ता आदि स्थानों भी हो आया था। सब जगह अच्छी सभाएं हुई थी और लोगों में सर्वत्र खूब उत्साह था। आंदोलन आरंभ करते समय मुझे ये आशा नहीं थी कि ऐसी सभाएं होंगी और उनमें लोग इतनी संख्या में उपस्थित होंगे। इन दिनों मेरी यात्रा अकेले ही होती थी, इस कारण अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे। खुफिया पुलिस वाले तो मेरे पीछे लगे ही रहते थे, उनके साथ मेरा झगड़ा होने का कोई कारण नहीं था। मुझे कोई बात छिपानी नहीं थी, इससे वे मुझे परेशान नहीं करते और न मैं उन्हें परेशान करता। सौभाग्य से उस समय मुझे महात्मा की छाप नहीं मिली थी। यद्यपि जहां मैं पहचान लिया जाता वहां इस नाम का घोष जरूर होता था। इस बार रेल में जाते हुए कई स्टेशनों पर खुफिया पुलिस वाले मेरा टिकट देखने आते और नंबर वगैरह लेते रहते। उनके प्रश्नों का उत्तर मैं उन्हें तुरंत ही दे देता था। साथ ही यात्रियों ने मान लिया कि मैं कोई सीधा साधा साधु अथवा फकीर हूं। अब 2-4 स्टेशनों तक खुफिया पुलिस वाले आए तो यात्री चिढ़ गए और उन्हें अब शब्द कहकर धमकाया, इस बेचारे साधु को नाहक क्यों सताते हो। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, इन बदमाशों को टिकट मत दिखाओ। मैंने इन यात्रियों से धीमी आवाज में कहा, उनके टिकट देखने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं अपना कर्तव्य वे समझते हैं, उससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। यात्रियों के गले ये बात नहीं उतरी। वे मुझ पर अधिक तरस खाने लगे और आपस में बात करने लगे कि निर्दोष आदमियों को इस तरह तंग क्यों किया जाता है।

खुफिया पुलिस वाले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं मालूम हुई, पर रेल की भीड़ तकलीफ का मुझे लाहौर से दिल्ली के बीच कड़वे अनुभव हुए। कराची से कलकत्ते मुझे लाहौर के रास्ते जाना था। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी, वहां की ट्रेन मेरी कहीं दाल उसमें नहीं गली। यात्री जबरदस्ती अपना सामान बना लेते थे और रास्ता भी दरवाजा बंद होता तो खिड़की के अंदर घुस जाते। मुझे कलकत्ते के निश्चित तारीख पर पहुंचना था, ये ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ते न पहुंच पाता। मैंने जगह मिलने की आशा छोड़ दी, कोई मुझे अपने डिब्बे में आने नहीं देता। आखिर एक मजदूर ने मुझे जगह ढूंढते देखकर कहा, मुझे 12 आने दो तो जगह दिला दो। मैंने कहा, मुझे जगह दिला दो तो जरूर 12 आने दूंगा। बेचारा मजदूर यात्रियों से गिड़गिड़ाकर कह रहा था, पर मुझे कोई लेने को तैयार न होता था। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, यहां जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो सिर घुसा दो, खड़ा रहना होगा। मजदूर मेरी ओर देखकर बोला, क्यों जी? मैंने कहा हां। उसने मुझे उठाकर खिड़की से अंदर डाल दिया। मैं अंदर घुसा और उस मजदूर ने 12 आने कमा लिए। मेरी ये रात मुश्किल से बीती। दूसरे यात्री ज्यों त्यों करके बैठ गए। मैं ऊपर वाली बैठक की जंजीर पकड़कर 2 घंटे खड़ा ही रहा।

दूसरे यात्री ज्यों त्यों करके बैठ गए। मैं ऊपर वाली बैठक की जंजीर पकड़कर 2 घंटे खड़ा ही रहा। इस बीच कुछ यात्री मुझे धमकाते ही रहते, अजी अब तक क्यों नहीं बैठते हो। मैंने बहुतेरा समझाया कि कहीं जगह नहीं है, पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नहीं हो रहा था। यद्यपि वे ऊपर की बैठकों पर आराम से लंबे होकर पड़े थे, बार बार मुझे परेशान करते थे। वे जितना मुझे परेशान करते थे, मैं उतनी ही शांति से उन्हें जवाब देता था। इससे वे कुछ शांत हुए, मेरा नाम धाम पूछा। जब मुझे नाम बतलाना पड़ा तब वे शर्माए, मुझसे माफी मांगी और मेरे लिए अपने बगल में जगह कर दी। सब्र का फल मीठा होता है कहावत मुझे याद आई। मैं बहुत थक गया था, मेरा सिर घूम रहा था। बैठने के लिए जगह की जब सचमुच जरूरत थी तब ईश्वर ने दिला दी। इस तरह मैं टकराता और धक्का मुक्की बर्दाश्त करता हुआ समय पर कलकत्ता पहुंच गया। कासिम बाजार के महाजन ने अपने यहां उतरने का निमंत्रण दे रखा था। कलकत्ते की सभा के अध्यक्ष भी वहीं थे। कराची की तरह कलकत्ते में भी लोगों का उत्साह उमड़ा था। कुछ अंग्रेज भी सभा में उपस्थित थे। 31 जुलाई के पहले गिरमिट की प्रथा बंद होने की सरकारी घोषणा हुई। सन 1894 में इस प्रथा का विरोध करने वाला पहला प्रार्थना पत्र मैंने तैयार किया था और यह आशा रखी थी कि किसी दिन ये अर्धगुलामी अवश्य ही रद्द होगी। 1894 से शुरू किए गए इस प्रयत्न में बहुतों ने सहायता की थी, पर यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था। इसका विशेष विवरण और इसमें भाग लेने वाले पात्रों की जानकारी श्रोताओं को दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह इतिहास में अधिक मिलेगी।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा, सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन और प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। मीडियम वेब के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।
1: एपिसोड 99 99

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, जिसमें आज के गायक कलाकार थे रवींद्र साठे और श्रीकांत पारगावंकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट वादन रात 10:30 पर, कलाकार होंगे गोपाल दास। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आशीष कुमार मिश्र का उप शास्त्रीय गायन 12:45 पर और 7:31 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत में हम सुनेंगे आराधना विश्वकर्मा के गाए भजन रात 8:00 और 12:30 पर। कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 9:50 पर, 1:45 पर और कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत 6:30 पर। कलाकार होंगे अमलेश कुमार पांडे। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हम सुनेंगे 6:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:15 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी हम सुनेंगे 1:15 पर, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा सोशल मीडिया और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमाधुरी का प्रसारण समय होगा 8:15 पर, रसरंग 7:31 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत रात 10:00, 7:00, 6:10 पर, 5:00 और कार्यक्रम झनकार के अंतर्गत 10:00। गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकते हैं 9:30 पर और व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइसी गीत एक्सप्रेस 11:00 से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 12:00। सदाभार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा 8:45 पर और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:00 से। श्रोताओं, यह था आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी @90

इस साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

नमस्कार बनारस, कैसे हैं आप सब। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस शिखा के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ गंगा जी की ठंडी हवा और 80 घाट की वो कुल्हड़ वाली चाय की खुशबू जब तक ना पहुंचे बनारस वालों की सुबह कहाँ होती है। आपने भी अपनी सुबह का चाय का स्वाद तो ले ही लिया होगा। और आज की सुबह के तो क्या ही कहने, भोर से ही बनारस का पूरा वेदर सिस्टम ही रिबूट कर दिया गया है। जी हाँ, कहाँ कल तक हम और आप गर्मी से बेहाल होकर गर्मियों से बचने के नुस्खे ढूंढ रहे थे, और कहाँ आज सुबह सुबह धुआंधार मूसलाधार बारिश और उस कड़कड़ाती कड़कती बिजली वाली आंधी तूफान ने सीधे कूल कूल मोड ऑन कर दिया है। खिड़की से बाहर झांकिए तो पेड़ कल तक जो धूल से सने थे आज एकदम नहा धोकर चमक रहे हैं। गंगा किनारे की ठंडी हवाएं सीधे दिल को छू रही हैं। वैसे दोस्तों, मौसम का ये अचानक बदलना हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दे जाता है। बनारस की इस सुबह ने साबित कर दिया है कि लाइफ में चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी तपिश हो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बदलाव प्रकृति का नियम है। जैसे ये काली घटाएं छाने के बाद ठंडी फुहारें आई हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी की परेशानियां भी बहुत जल्द खत्म होंगी और खुशियों की बारिश होगी। लेकिन हाँ बनारस, मौसम का मजा तो अपनी जगह है, पर रास्ते में थोड़ा संभल कर निकलिएगा। आंधी तूफान की वजह से कहीं पेड़ की टहनियां गिरी हो सकती हैं, तो कहीं जल जमाव भी हो सकता है। गाड़ी जरा धीरे चलाइएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। बाहर चाहे जितनी भी टेंशन हो या फिर आंधी तूफान के साथ ये बौछार हो, अपने अंदर का जो कूल है ना, वो खोना नहीं चाहिए। और हमारे बनारस के लोग तो वैसे भी मस्त मौला होते हैं। यहाँ चिंता की चिंता नहीं करते, बल्कि चिंता छोड़ो और घाट चलो कहा जाता है। अगर आज कोई काम अटका हुआ है या कोई टेंशन है, तो एक बार दिल पर हाथ रखिए और खुद से बोलिए, देखा जाएगा जो होगा, और पूरे जोश के साथ काम पर निकल पड़िए। मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, सुबह जल्दी उठने से और मेहनत करने से आपका दिन बड़ा जरूर मिल जाता है। आज तारीख है 29 मई। आज का दिन इतिहास में दो बड़ी घटनाओं के लिए खास है। ये घटनाएं आपको बहुत मोटिवेशन देंगी। चलिए आपको बताते हैं वो दो बड़ी बातें। आज है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आज ही के दिन साल 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। और ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, इंस्पिरेशन यानी एक प्रेरणा भी है। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो जिगरा और बैलेंस चाहिए ना, वो हमारे बनारस के भाई बंधु गोदोलिया और लंका के ट्रैफिक में बिना गाड़ी टच किए अपनी दोपहिया निकालने में रोज दिखाते हैं। जिन्होंने गोदोलिया का जाम पार कर लिया, उनके लिए एवरेस्ट क्या चीज है कि नहीं बनारस।

बट जोक्स अपार्ट, हम इतना कह सकते हैं कि अगर ठान लिया तो एवरेस्ट फतेह भी हम इंसान कर सकते हैं, बस ज़रूरत है हौसले की। इसके अलावा 29 मई 1968 को हमारे देश के सबसे दिग्गज पहलवान दारा सिंह ने अमेरिका के लू थेस को हराकर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। दारा सिंह ने दिखाया कि अगर नियमित मेहनत और खुद में जज्बा हो तो दुनिया का कोई भी अखाड़ा छोटा पड़ जाता है। हमारे बनारस में भी तो सुबह सुबह अखाड़े पहलवानों की मेहनत से गुलजार रहते हैं। तो चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या नौकरी, अपने अंदर के दारा सिंह को जगाइए और पूरे जोश से मेहनत पर निकल पड़िए। पर हाँ, निकलने से पहले अपने ट्रैफिक रूट का जरूर ध्यान रखिएगा और साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन भी करिएगा। आज मौसम जो इतना यू टर्न ले चुका है, तो उस यू टर्न की वजह से जल जमाव भी कई जगह होंगे ही, तो गाड़ी कृपया धीरे ही चलाइए और सुरक्षित रहिए। क्योंकि कोई भी लक्ष्य आप तभी पूरा कर सकेंगे जब स्वास्थ्य और मन दोनों ही अच्छे रहें। चलिए, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, पर अब समय है एक बेहतरीन सॉन्ग का। आज के इस खूबसूरत, खुशनुमा और कड़क सुबह की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही कड़क और एनर्जेटिक गाने के साथ। आप बस खिड़की के पास बैठिए, चाय का कप हाथ में लीजिए और एंजॉय कीजिए मौसम का ये यू टर्न। हम आते हैं बस इस सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस।

वेलकम बैक बनारस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस आकाशवाणी वाराणसी के संग। दोस्तों, आज जब आप सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं ना, तो ज़रा मुस्कुराइए और ख़ुद को गर्व से भर लीजिए, क्योंकि हमारी स्वदेशी ताकत का डंका आज सात समंदर पार अमेरिका तक गूंज रहा है। एक समय था जब दुनिया भारत को पिछड़ा हुआ समझती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि जब हम ठान लेते हैं तो चांद का वो कोना ढूंढ निकालते हैं जिसे दुनिया देख भी नहीं पाई थी। जी हाँ, हमारे इसरो ने एक बार फिर पूरी दुनिया में तिरंगा लहरा दिया है।

तो ज्ञान की बात सुनिए और गर्व से भर जाइए। इसी मई के महीने में अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन को दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष पुरस्कार गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से नवाजा है। ये वो अवार्ड है जिसे पाने के लिए नासा और दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां तरसती हैं। दुनिया इस बात पर हैरान है कि जितने बजट में हॉलीवुड वाले एक स्पेस फिल्म बनाते हैं, उतने बजट में हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के सबसे खतरनाक साउथ पोल पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को शान से उतार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। उसके लिए हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने यानी कि स्पेस डॉकिंग का वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के सिर्फ 3 देश ही कर पाए थे। तो दोस्तों, इस घटना से हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख ये है कि साधन चाहे कितने भी सीमित क्यों ना हो, अगर आपके हौसलों में दम है और इरादे नेक हैं, तो आप मिट्टी से उठकर चांद को भी छू सकते हैं। आज हमारा भारत बदल रहा है। हम सिर्फ दूसरों की बनाई तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम खुद दुनिया के लिए तकनीक बना रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को हमारे इन वैज्ञानिकों से सीखना चाहिए कि असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर इतिहास रचना है। तो मेरे बनारस, आज का दिन इसी गौरव और जोश के साथ शुरू कीजिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी अपने शहर, अपनी सोच को आगे बढ़ाना है। इस इतनी बड़ी वैश्विक कामयाबी के बीच जरा सोचिए, जो देश अंतरिक्ष में इतनी सफाई और सटीकता से चांद पर तिरंगा गाड़ सकता है, जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में तैरते कचरे को साफ करने की तकनीक ढूंढ रहे हैं, क्या उस देश के नागरिक अपने शहर की सड़कों को साफ नहीं रख सकते? हम गर्व से कहते हैं कि हमारा बनारस दुनिया का सबसे पुराना और जीवंत शहर है। पूरी दुनिया से लोग हमारे घाटों की खूबसूरती, हमारी गलियों का रस देखने आते हैं। लेकिन भाई, जब हम और आप पान खाकर दीवारों पर पीक थूक देते हैं ना, या चिप्स का पैकेट और प्लास्टिक की बोतल चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक देते हैं, तो दिल कचोटता है। सीख बहुत सीधी और साफ है बनारसियों। देश को चांद पर पहुंचाना वैज्ञानिकों का काम था, वो उन्होंने बखूबी कर दिया। लेकिन अपनी काशी को, अपनी इन गलियों और घाटों को स्वर्ग जैसा साफ रखना, ये हम बनारसियों का ही काम है। नगर निगम की गाड़ियां तो रोज सुबह कचरा उठाने आती ही हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम खुद ठान लेंगे कि ना गंदगी करेंगे और ना ही करने देंगे। जब देश अंतरिक्ष में नंबर वन बन सकता है, तो हमारा बनारस सफाई में नंबर वन क्यों नहीं बन सकता? अगली बार कचरा फेंकने से पहले जरा इसरो के उन वैज्ञानिकों को याद कर लीजिएगा, जिम्मेदारी खुद ब खुद महसूस होने लगेगी। तो मेरे प्यारे बनारस, आज का दिन इसी गौरव, जोश और एक नए संकल्प के साथ शुरू कीजिए। अपनी गाड़ी में एक छोटा सा डस्टबिन रखिए और अपनी काशी को सुंदर बनाइए। अब वक्त हो चला है अपने शहर बनारस का हाल चाल जानने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हाल चाल। वाराणसी कैंट स्टेशन से लखनऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन का नियमित संचालन गुरुवार से शुरू हो गया। ये ट्रेन अयोध्या धाम सहित कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। कैंट स्टेशन से लखनऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन का गुरुवार से नियमित संचालन प्रारंभ हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आयोजित समारोह में सुबह 6:20 पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक में कर्मचारियों को पदोन्नति और संविदा कर्मियों को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक बुधवार को कई मायनों में अहम रही। 7 महीने बाद आयोजित हुई इस बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन, नियुक्तियों, प्रमोशन, भर्ती जांच, अनुशासनात्मक मामलों, सुरक्षा और शैक्षणिक सुधारों सहित 42 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। वाराणसी

और पूर्वांचल में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मौसम का रुख बदल चुका है। जहां लू के थपेड़ों का असर खत्म हो गया है और प्री मानसून की स्थिति बन चुकी है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही और तापमान में कमी का अनुमान जताया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रथ यात्रा से लेकर कैंट तक के स्टेशनों पर अत्याधुनिक सेंसर और स्कैनर लगाए गए हैं। रोपवे का पूरा संचालन अत्याधुनिक स्कॉडा यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन सॉफ्टवेयर के जरिए होगा। इस सिस्टम से रोपवे के संचालन की निगरानी रूट पर पड़ने वाले सभी पाँचों स्टेशनों से एक साथ की जा सकेगी। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं इतिहास में 29 मई की खासियत। सन 1987 में भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था आज के ही दिन यानी कि 29 मई को। 1990 में बोरिस यल्त्सिन सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे आज के ही दिन। 1906 में हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे आज के ही दिन। 1865 में पत्रकारिता जगत की प्रमुख हस्ती रामानंद चटर्जी का जन्म हुआ था आज के ही दिन। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के नेता वी एस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी आज के ही दिन। 2010 में अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 समझौते में छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग के पहलू पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान किया था आज के ही दिन यानी कि 29 मई के दिन। तो ये थी 29 मई की खासियत इतिहास के पन्नों में। अब शो को वाइंड अप करने का समय हो चला है दोस्तों। आपसे मैं फिर मिलूंगी एफएम 100.6 विविध भारती के वाराणसी केंद्र पर कार्यक्रम काशी कनेक्ट में सुबह 10 बजे और कार्यक्रम बनारस बीट्स में सुबह 10:30 पर। बनारस बीट्स में हमारा आज का सवाल है कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिनके ऊपर ठेठ बनारसी अंदाज सबसे ज़्यादा सूट करेगा, और उसका कारण भी बताइए कि क्यों सूट करेगा। अपने जवाब हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 7905519981 पर। और अब इसी के साथ शिखा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को

0: अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बारे में चर्चा की।
3: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188,00,000 टन अधिक है।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा

0: 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन्स, थाना बैरक और अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर परिसर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितब्रा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितम्बरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ जिलों से ओले पड़ने के भी समाचार मिले हैं। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कुछ स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। बदायूं और बिजनौर सहित कुछ अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की सूचना है। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर और कौशाम्बी सहित कई अन्य जिलों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और

बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। कहा, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता। और तेज आंधी और गरज चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर जारी की चेतावनी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, DRM, DTH, न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उप शास्त्रीय गायन। कलाकार हैं आशीष कुमार मिश्रा, राग है मिश्र गौरी में ठुमरी।

आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम और आज हम आपको आशीष कुमार मिश्र का उपशास्त्रीय गायन सुनवा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं राग भैरवी में दादरा।

आप सुन रहे थे भैरवी में दादरा, उपशास्त्री गायन में। आइए एक बार फिर आपको सुनाते हैं राग भैरवी में ठुमरी।

0: कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय गायन। कलाकार थे आशीष कुमार मिश्रा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।

0: आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
5: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया।

0: है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगिरी में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड

0: के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने

0: Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदामात पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफिक चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे और सीनियर ओहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवंबर में BSF के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार मुमालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले

फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के

0: जनाब नबीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है, 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिले सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है, जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज हैं। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरिबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 امتحانات میں شامل ہونے والی تمام مرکزی اور شریک یونیورسٹیوں کو امتحان

0: की नई तारीखें और एडमिट कार्ड जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 21 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। आईएमडी के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इस तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मानसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफायर 1 में डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमाया खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की शह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मस्नूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतह कमेटी इस मामले से निपटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निपटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DRM, DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।

0: पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दादू
10: दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्राम मधुरिमा में।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा में। दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट शशि, और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे भारतीय सिनेमा और रंगमंच के उस महान कलाकार की जिनकी गूंजती आवाज और शानदार अभिनय ने हिंदी सिनेमा की नींव को और मजबूत बनाया। वो अभिनेता जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि थिएटर, निर्देशक और हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आज हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जिसके बिना कपूर खानदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज कपूर की, जिन्होंने सिनेमा को इंडस्ट्री से विरासत बनाया।

3 नवंबर 1906 को जन्मे पृथ्वीराज कपूर को हिंदी सिनेमा के पहले महान सितारों में गिना जाता है। साल 1928 का वक्त, लायलपुर पेशावर से एक 22 साल का नौजवान बंबई पहुंचता है। जेब में कुल जमा पूंजी मात्र 89 रुपए और आंखों में बेसकीमती सपने। पृथ्वीराज ने अपनी पढ़ाई तो कानून के क्षेत्र से की थी, लेकिन इन्होंने राह चुनी अभिनय की, क्योंकि पृथ्वी का दिल हमेशा स्टेज के लिए धड़का।

इम्पीरियल फिल्म कंपनी में 200 रुपये महीने पर जूनियर आर्टिस्ट की नौकरी मिली। पहली बोलती फिल्म आलमारा 1931 में आई और पृथ्वीराज कपूर को उसमें रोल मिला, पर असली पहचान मिली विद्यापति और सिकंदर से। 6 फुट 3 इंच का कद, खानदानी रोग और वो आवाज़ जो थिएटर की आखिरी कुर्सी तक पहुंची। जब पृथ्वीराज जी सिकंदर बने तो लगा यूनान का बादशाह सचमुच हिंदुस्तान आया है।

पृथ्वीराज कपूर की दमदार आवाज और शाही व्यक्तित्व ने उन्हें ऐतिहासिक किरदारों के लिए खास बना दिया। के आसिफ 9 साल तक फिल्म मुगले आजम बनाते रहे, लेकिन जब अकबर के किरदार को पृथ्वीराज ने आवाज दी और कहा सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे, तो लगा 16वीं सदी लौट आई है।

0: हम बात करेंगे पृथ्वीराज कपूर के बारे में और आगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।
1: मतलब?
2: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
3: पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
1: हाँ बेल, मुझे मार, मतलब
2: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
4: और ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
1: इसका मतलब?
4: इन्हीं से पूछो।
3: समझा पापा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम मधुरिमा में। आप है अपने रेडियो दोस्त और होस्ट शशि के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह पृथ्वीराज कपूर की। पृथ्वीराज ने फिल्में तो बहुत की, पर उनका पहला प्यार था रंगमंच। 1944 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बनाया पृथ्वी थिएटर्स, 16 साल, 2662 शो, 25,98,967 दर्शक। दीवार, पठान, किसान, गद्दार, हर नाटक में सामाजिक संदेश। और जानते हैं इस पृथ्वी थिएटर की खास बात क्या थी? पृथ्वी थिएटर के हर शो में कलाकार तनख्वाह नहीं लेते थे, टिकट से जो कमाई होती थी वो सब में बराबर बढ़ती। देश भर में घूम घूम कर नाटक करना, नए कलाकारों को मौका देना और कला को लोगों तक पहुंचाना, यही उनका उद्देश्य था।

0: आजादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा,
1: सुनो तो
0: नाना,
1: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: Muskelrei.
1: Pelle Zerna auf Muskelrei. Pelle Zerna auf Muskelrei.
2: श्रोताओं, एक समय ऐसा आया कि जब आर्थिक तंगी के कारण पृथ्वी थिएटर बंद होने वाला था, तो पृथ्वीराज कपूर ने उसके आखिरी शो के बाद सारा सामान जला दिया। किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, कलाकार को मोह नहीं पालना चाहिए। कला बहती नदी है, रुकेगी तो सड़ जाएगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, जिसने हिंदी सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं संस्कार दिए, जिसने सिखाया कि नाम कमाना आसान है, इज्जत कमाना मुश्किल, और इज्जत कमाकर उसे निभाना सबसे मुश्किल।

हमारा आज का मधुरिमा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने रेडियो दोस्त शशि को अनुमति, और आपको आज का मधुरिमा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद

0: इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। गर्मी ने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन एवं नगर निगम ने राहत के कार्य तेज किए हैं। जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों की सूचीकरण कार्य के लिए कुल 1383 परगणक और 223 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। यह अभियान 20 जून 2026 तक चलाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों को स्वयं गणना की सुविधा भी दी, जिसमें 7 मई से 21 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहारनपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जिले के आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा मॉडल को सक्सेस स्टोरी के रूप में स्थान दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन के निर्देशन में आईटीसी मिशन सुनहरा कल प्रथम संस्था एवं आईजीडी के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के भाषा विकास, सीखने की अक्षमता और सामाजिक व्यवहार को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा मिली इस सराहना से सहारनपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाया है। CBSE 12वीं परीक्षा परिणाम में देवबंद की छात्रा नंदिनी कुशवाहा ने 98.8% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। नैना स्वामी 98.4% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। हर्षिता कपूर और श्रेया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। मेधावियों के सम्मान में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में RTI फीस प्रतिपूर्ति घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर BDM पब्लिक स्कूल शांति नगर और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लेबर कॉलोनी के प्रबंधकों एवं प्रध्यानाध्यापिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच में फर्जी दावों के आधार पर सरकारी धनराशि प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद 32.61 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही दोनों विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीते दिनों जिले में बड़ी कार्रवाई हुई। देवबंद में एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के SDO दिनेश कुमार मौर्य और संविदा कर्मी मोहम्मद शाकिर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मोहम्मद एहरार ने आरोप लगाया था कि आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन और सर्वे सही कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सहारनपुर की उप श्रम आयुक्त वंदना को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। उन पर एक निजी अस्पताल निर्माण मामले में नियम विरुद्ध 18 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी करने और श्रम बोर्ड को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर में जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। DIG अभिषेक सिंह, BM अरविंद कुमार चौहान और SSP अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया,
1: बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे नमाज जो संपन्न हुई है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे उनके डिजाइनेटेड प्लेसेस थे वहाँ पे नमाज अदा की है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ।
0: सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन समेत 32 लोगों पर थाना सदर बाजार में FIR दर्ज हुई। उन पर DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर चक्का जाम करने का आरोप है। मामला मोनू कश्यप हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन से जुड़ा है।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख व स्वर है रविन्द्र कुमार का।
3: जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पर्व का गंगा स्नान का पौराणिक महत्व है। श्रद्धालुओं का काफी जनसैलाब उमड़ा। गंगा दशमी के ही दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित यूपी के कई जनपदों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे। गंगा स्नान को

0: लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा की दृष्टि से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोर भी लगाए गए। वहीं महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए। जनपद हापुड़ में भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक बढ़ने से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा है। हीट वेव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जनपद हापुड़ का स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि तेज धूप से बचें, हो सके तो छाते या कपड़े का प्रयोग करें, पानी नियमित रूप से पिएं, सुबह 10 से 4 बजे तक किसान खेतों में काम करने से बचें, ताजा खाना और फलों का सेवन करें। अधिक गर्मी से हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आम जनता गर्मी से बचाव करे ताकि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़ सके। जनपद हापुड़ में जिला अस्पताल में पहुँचने वाले रोगियों के सभी वार्डों में एसी लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। वातानुकूलित इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को भर्ती किया जा सके। जिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षक ने रोगियों के लिए ORS के घोल के कैंपर की व्यवस्था की है। वहीं अस्पताल में आने वाले रोगियों को ORS के पैकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने और खान पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। जनपद हापुड़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में एक माह तक चलने वाले शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में शहीदों को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जनपद हापुड़ खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गोदाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी माल को नष्ट कराया। जनपद में एक गोदाम में भारी मात्रा में लाल सॉस बनाई जा रही थी जो मिलावटी सामान से बनाई जा रही थी। इसके साथ ही सॉस को गाढ़ा करने के लिए कई प्रकार के केमिकल सामान और अन्य रंग इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी के पास एक दुकान पर छापा मारा, जहां टीम ने 30 पेटी सॉस को सीज कर दिया। इसमें 360 बोतल पैक थी। इसकी अनुमानित कीमत 22,680 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 335 किलो सॉस को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 16,450 रुपए बताई जा रही है। सॉस के नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा बचत की अपील को साकार करने एवं एकल वाहनों के प्रयोग के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार PPP मॉडल पर आधारित गांव-गांव तक बस सेवा प्रदान कर रही है। जनपद हापुड़ में इस मॉडल के तहत एक बस का अनुबंध करके गाँव तक बस सेवा शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ रोडवेज डिपो से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी एवं सदर विधायक विजयपाल आरती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव-गांव तक सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब ऐसे गाँव में भी बस पहुँचेगी जिन गाँवों में आने जाने की कोई साधन नहीं थे। जनता और छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। जनपद हापुड़ में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत COVID-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए 23 वर्ष पूर्ण होने पर देने का प्रावधान के तहत जिला अधिकारी ने चेक प्रदान किया। जनपद हापुड़ में उक्त योजना के अंतर्गत 11 बच्चों को चिन्हित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज DRM DTH न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सूचना खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। खोए हुए व्यक्ति के बारे में पहली सूचना हमें सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट

वाराणसी से प्राप्त हुई है। अनुराधा पत्नी राम अवतार, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, लंबाई लगभग 157 सेंटीमीटर, चेहरा लंबा, रंग गेहुआ, जो भोजपुरी और हिंदी भाषाएं समझ और बोल सकती हैं। ग्राम सीवो, थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के अपने निवास स्थान से लापता है। इनकी जानकारी मिलने पर सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति के बारे में अगली सूचना हमें थाना शिवपुर सहायक पुलिस आयुक्त कैंट जनपद वाराणसी से प्राप्त हुई है। रोहित मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य, जिनकी उम्र 22 वर्ष, लंबाई लगभग 165 सेंटीमीटर, हुलिया सामान्य, कदकाठी सामान्य है। अपने निवास स्थान 58/45 पुरानी चुंगी, पंचकोशी रोड, वाराणसी थाना शिवपुर से लापता हैं। इनकी जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस या उक्त पते पर सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति के बारे में अगली सूचना हमें थाना सिगरा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त हुई है। सीमा यादव पुत्री फिरंगी यादव, जिनकी उम्र 26 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फिट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये दिनांक 21 मई 2025 से आईपी मॉल सिगरा से लापता है। उक्त दिनांक को इनका पहनावा हरे रंग की साड़ी थी। इनकी सूचना मिलने पर राजगृह यादव पुत्र शिववचन यादव, थानपुर पोस्ट कुराड़ी थाना दुर्गावती जनपद कैमूर बिहार अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

0: आप सुन रहे हैं सूचना खोए हुए व्यक्ति के बारे में। अगली सूचना हमें थाना चौबेपुर कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी से प्राप्त हुई है। श्रीमती सुनीता, जिनकी उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, कदकाठी सामान्य है, इनके बाएं गाल पर तिल एवं बाएं हाथ पर कटे का निशान है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इनकी जानकारी मिलने पर मनोज कुमार, ग्राम तातेपुर, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना यहीं समाप्त होती है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रोग्राम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर, आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, भारत में पैदा हुई उर्दू ज़बान आज तमाम दुनिया में मकबूल और मशहूर है। दुनिया के तमाम ममालिक में उर्दू ज़बान के शायकीन हैं। तमाम दुनिया में उर्दू अदब की बड़ी बड़ी महफिलें आरास्ता होती हैं जहाँ उर्दू ज़बान को तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। लेकिन इन सब के दरमियान उर्दू रस्म-ओ-ख़त पर एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। ये मसला क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या हालात हैं, इन तमाम मौजू पर हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा। प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा, उर्दू प्रोग्राम में आपका सबसे पहले खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: मैम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ज़बान है उसकी तरक्की और फ़रोग में, कोई भी ज़बान हो उसकी तरक्की या फ़रोग में रस्म-ओ-ख़त की क्या अहमियत होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल है ये उमैर साहब। देखिए, जहाँ तक बात रस्म-ओ-ख़त की है, किसी भी ज़बान के फ़रोग में, आपके सवाल को ही दोहरा रही हूँ, बहुत अहमियत है रस्म-ओ-ख़त। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि एक मरतबा गोपीचंद नारंग साहब ने भी कहा था कि अगर आप ज़बान को जिस्म कहें, उसकी खाल है रस्म-ओ-ख़त। यानी अगर हम ये कहें कि ज़बान जिस्म है, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि रस्म-ओ-ख़त उसकी रूह है। किसी भी ज़बान या किसी भी भाषा या किसी भी लैंग्वेज के मुस्तकबिल, उसके ज़िंदा रहने के लिए उसके रस्म-ओ-ख़त, यानी वो किस तरह से लिखी जा रही है, उसका कायम रहना और उसको सीखना और दूसरों को सिखाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो रस्म-ओ-ख़त का सीखना भी ज़रूरी है, सिखाना भी ज़रूरी है, और जो अहमियत है 100% है, उससे आप या मैं कोई भी इनकार नहीं कर सकता है।
0: दूसरा सवाल ये है कि जो, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं इधर उधर से, जो बीच में जाते हैं समाज के बीच में, तो हम लोग देख रहे हैं, तो जो रस्म-ओ-ख़त की, खासकर उर्दू रस्म-ओ-ख़त की जो मौजूदा हालात हैं वो कैसी है और क्या आप उससे पूरी तरीके से मुतमईन हैं?
1: देखिए, वक्त और हालात के हिसाब से हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो इंसान हो चाहे वो ज़बान हो, कुछ तब्दीलियाँ, उतार चढ़ाव, माइनस प्लस होते हैं। आपने जो कहा कि आप जो हालात देख रहे हैं वो आपका नुक्ता नज़र है, या कोई और भी अगर मुझसे ये बात कहेगा आकर, वो उसका नुक्ता नज़र है, ठीक है। अगर वो कहीं गए, उन्होंने देखा, मैं अक्सर करके लोगों की ज़बान से ये सुनती हूँ, अरे फला साहब तो उर्दू में पढ़ रहे थे लेकिन लिख कर लाए थे हिंदी में। अक्सर मुझसे ये सवाल होता है, तो ऐसा ये तो नहीं है कि 100% लोग ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों को, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सीख रहे होते हैं और उन्हें तलफ़्फ़ुज़ की दिक्कत है, क्योंकि देखिए उर्दू का उच्चारण या उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ या प्रोनंसिएशन अगर आपका सही नहीं है, तो फिर इससे बड़ी आपके लिए कमी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, ये वो ज़बान है कि जिसकी मिठास हमारे दिलों पर बराह रास्त असर करती है, और ये उस तलफ़्फ़ुज़ की ही वजह से होता है। तो मेरे अक्सर शागिर्द ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उर्दू ज़बान को सीखना शुरू किया और फिर जब सीखते सीखते वो पुख्ता हो गए, तो वो उर्दू में ही लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस बीच में अगर किसी ने देख लिया, अरे भैया हिंदी में लिख के लाए हैं, तो उसमें कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है। जब वो सीख जाएंगे वो लिखेंगे, और जो सीखे हुए हैं रस्म-ओ-ख़त, उनमें से 99% लोग, कोई 1% हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू को उर्दू में ही लिखते हैं। और देखिए, उसका मेरा दावा ये इसलिए है कि हम जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, हम आसमान या हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इतने बरस हो गए पढ़ाते हुए, आज भी उसी तालीम से जुड़े हैं। तो उम्मीद है, और इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग रस्म-ओ-ख़त ना सीखें।
0: अच्छा मैम, आपने ये देखा कि उर्दू जो है वो आज पूरे आलम में पहुंच चुकी है, लोग बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलने वाले हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि उर्दू रस्म-ओ-ख़त की क्या बुनियादी खुसूसियात हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है उपर। और देखिए, ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है ये मौजू। देखिए, उर्दू रस्म-ओ-ख़त की बुनियादी खसूसियात क्या है, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। आप देखिए, इंग्लिश को देखिए, हिंदी से को देखिए, या और दूसरी लैंग्वेजेस हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाती है, लेकिन उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उर्दू में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए कि उर्दू ज़बान, आपने कहा जैसा कि भाई हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन उर्दू में कितनी सारी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है उर्दू की। आप देखेंगे इसमें संस्कृत के अल्फाज भी हैं, आप देखिए कि इसमें जो है वो अरबी और फारसी के अल्फाज भी हैं,

इसके अंदर जो है उर्दू ने अपने अंदर पुर्तगाली को भी समोया है, चाइनीज लफ्ज भी मिल जाएंगे। अब इतना इतनी सारी जबानें जिसमें मिक्स हो गई हैं और फिर इतनी सारी तहजीबें भी तो मिक्स हुई साथ में, तो उन सब को मिला के हमारी उर्दू जबान बनी। फिर आप देखिए कि इसमें जो खत, यानी जिस तरीके से रस्म उल खत का मतलब ये है कि जबान को लिखने का तरीका क्या है, तो उर्दू ने अपना एक खास, कहा ये जरूर जाता है कि अरबी और फारसी

0: उर्दू के जो बढ़ते रुझान हैं उससे जो असल उर्दू का रस्म अल-खत है उसको क्या खतरात होंगे?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता कि खतरात तो इस तरह से हैं जितना हम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी को, मान लीजिए, उर्दू लिखनी नहीं आती, कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसी खातून है कि जब तक वो रस्म अल-खत नहीं जानती हैं, अब वो सीख रही हैं अगर, तो वो रोमन के ज़रिए से चीज़ों को ना सिर्फ ये कि पढ़ सकती हैं, शेर पढ़ सकती हैं, गज़ल पढ़ सकती हैं, नज़्म पढ़ सकती हैं, लिख भी सकती हैं उसमें, लेकिन बहरहाल उनको ये एहतियात लाजिम है कि जब उन्हें ज़बान आ जाए और वो पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो फिर वो उर्दू रस्म अल-खत का ही इस्तेमाल करें।
0: मैम, आप भी तालीमी इदारे से जुड़ी हुई हैं और क्योंकि सिखाती तो आप ही लोग हैं, उर्दू लिखना पढ़ना जो भी है, लेकिन आगे एक वक्त पे जा करके लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिखने का काम कम हो जाता है, तो तालीमी इदारों की क्या जिम्मेदारी है, क्या तजावीज़ आप देंगी कि
1: जी
0: उर्दू रस्म खत जो है जो लोगों में वो रुझान हमेशा बना रहे हैं?
1: हाँ, बिल्कुल। देखिए देखिए, हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, और आपको ये बताएं कि हम लोग जिस ज़माने में तालीम हासिल कर रहे थे, उस ज़माने में भी हमारे पेरेंट्स कोई, या हमारे साथ हमारे जो दोस्तों का सर्किल था उसमें हर तरह के लोग थे। पेरेंट्स में बहुत हाईली क्वालिफाइड भी थे और बिल्कुल घरेलू भी थे, सब तरह के पेरेंट्स थे। ऐसे में हम लोगों ने, सभी दोस्तों ने तालीम हासिल की, और उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा, तो हमारे यहाँ ये था कि हम लोगों को तीनों ज़बानें सिखाई जाती थी। हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग थे, अगर वो हिंदी भाषी थे तो वो उर्दू भी पढ़ते थे, उनके हाथ की रसीदें हमारे पास मौजूद हैं आज भी। इसी तरह से हम लोगों ने उर्दू पढ़ी तो हम लोगों को हिंदी भी पढ़ाई गई, और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जगहों पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश कंपल्सरी पेपर्स भी होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम ये ना अपने दिमाग में तय कर लें, नई नस्ल से भी खास तौर से, और अपने लोगों से भी, कि भाई देखिए, हम अगर कई जबानें सीखें तो हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत बेहतर है। हिंदी हमारी हिंदुस्तान की जबान है, हमारी हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रूह का रिश्ता है, दोनों सगी बहनों की तरह से हैं। तो अगर हम उर्दू पढ़ें तो हम हिंदी ज़रूर पढ़ें, उर्दू रस्म अल-खत सीखें, हिंदी रस्म अल-खत भी
0: भी सीखें,
1: सीखें,
0: हाँ।
1: और साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखें, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल काम करना है हमें, तो जो आपने कहा, आपका सवाल बहुत बहुत अच्छा है, ये आज की ज़रूरत है ये सवाल, कि अगर हम ऑफिसेज में जा रहे हैं, हमें अपना कोई लेटर लिखना है या हमें अपनी कोई बात कहनी है, तो हमें वहाँ हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी,
0: पड़ेगी, हाँ।
1: तो हम क्यों नहीं अपना दिल इतना वसी करते हैं, हमें सारी ज़बानें सीखनी चाहिए। और देखिए, हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि उन स्कूल कॉलेजेस में ये तीनों ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो जिस मीडियम में पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमको तो यही ज़बान सीखनी है, अगर हम दूसरी ज़बान सीखेंगे, अरे भाई हमारे बच्चे को ये नहीं आता, तो क्यों नहीं सिखाते हैं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, ये आप नई नस्ल को ब्लेम नहीं कर
0: नहीं
1: सकते,
0: नहीं वो तो
1: ये
0: है
1: तो पेरेंट्स की, घर वालों की, सबकी, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को या स्टूडेंट्स को या बच्चों को तीन चार ज़बानें ज़रूर सिखाएं। और हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम माँ के साथ सीख के आते हैं, हिंदी और इंग्लिश हमारे स्कूल कॉलेजेस हर जगह मौजूद है, हम वहाँ सीखते हैं, तो ये क्या शिकायत है भाई कि मतलब उर्दू सीख ली है तो और क्यों नहीं सीखेंगे?
0: मैम, तालीमी इदारों की बात हुई और भी जो शोबे हैं उनकी बात हुई, एक शोबा अदबी इदारे जो हैं या जो अदबी तंजीमें हैं वहाँ पे काम रस्मुल खत के लिए हमारे हिसाब से नहीं होता है, मुशायरे होते हैं, सेमिनार होते हैं, कोई इस तरीके से नहीं होता जिससे रस्मुल खत को फ़र्वोग मिले। आप उनको क्या तजावीज़ देनी चाहेंगे कि उससे रस्मुल खत को और फ़र्वोग मिले?
1: देखिए, उसके लिए तो फिर हमें बाकायदा एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर हम कोई भी अदबी प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो वहाँ हम कुछ ना कुछ 10 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा, जितना मुंतजमीन जो हैं वो हमें वक्त दे सकें, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करें कि जिससे हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते, हम कहें कि भाई ठीक है, हमने आपको मुशायरे में बुलाया, आप हमारी ऑडियंस हैं, लेकिन जिस ज़बान को आप सुनने आए हैं, 10 मिनट आप उसके अल्फ़ाबेट्स तो सीखिए, और वहाँ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें वो भाषा या वो ज़बान उन्हें जो है वो सिखाई जाए, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, मुशायरों को लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी भीड़ होती है, कि अगर हम इस तरह से कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को इख्तलाफ हो, मे बी पॉसिबल कुछ लोग ना पसंद करें, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं होगा ना। देखिए, 90% लोग पढ़ने भी आएंगे और सीखने भी आएंगे, इसके लिए हमें जो

0: इंतजमीन है, कहीं ना कहीं उनसे राबता
1: कुछ
0: करना
1: राइटिंग
0: होगा।
1: कंपटीशन टाइप
0: हाँ
1: के।
0: बिल्कुल। हम जैसे अभी देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, अभी एक प्रोग्राम हुआ और हम लोग भी हर साल करते हैं, पर्सनल बात नहीं करूं, सिर्फ प्रोग्राम के हवाले से बात करूं। यह है कि दो तीन प्रोग्राम ऐसे फिलहाल लखनऊ में ही हो रहे हैं कि जिसमें जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए तालिब इल्म हैं, जो जिन्हें उर्दू नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, और बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन हैं वो, या कैफी आजमी अकेडमी है, वहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं और जगहों पर भी होते हैं, तो उसमें ये रखा जाता है कि जो नए तालिब इल्म हैं उनके लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिशन, जैसे अफसाना कॉम्पिटिशन, ठीक, या फिर जबान सिखाई गई कुछ महीने, फिर वहाँ उन्हें एक एग्ज़ाम कराया गया और फिर उस एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट उन्हें उस प्रोग्राम में दिया गया। और मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के प्रोग्राम, वहाँ पे जबान सिखाने के लिए इस तरह कोशिश की जाती है और उसमें काफ़ी कामयाबी भी है। पर मैंने कहा ना कि हम जानना नहीं चाहते, हम लोग करना नहीं चाहते, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये मुशायरों में भी मुमकिन है। और देखिए, जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मादरी जबान से बेपनाह मोहब्बत कर, अच्छा, जो उर्दू के तलफ्फुज़ या उर्दू की मिठास की शीरीनी की वजह से उर्दू को बेपनाह चाहते हैं, उन शायकीन की एक बड़ी तादाद है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो आप यकीन जानिए उमर साहब कि उसे कामयाबी मिलेगी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस जानिब हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे इल्म में ऐसे चार पांच प्रोग्राम्स यहीं इस लखनऊ में हर 6 महीने पर होते हैं कि जिसमें ये कोशिश की जाती है कि नई जनरेशन इस जबान या इस अदब के लिए या इस रस्मुल खत को सीखने के लिए खड़ी रहे, बल्कि दूसरों को भी सिखाए।
1: मैम, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, आखिरी सवाल छोटा सा ये है कि आवाम की क्या जिम्मेदारी इस रस्म अल खत के मसले पर होनी चाहिए?
0: देखिए, अवाम की जिम्मेदारी रस्म अल खत के सिलसिले में यह है कि वो न सिर्फ ये कि अपने बच्चों को सिखाए, और अगर किसी के यहाँ उर्दू तालीम का इंतज़ाम है तो पड़ोस में अगर वो देखता है कि भाई तालिब इल्म कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी दिलचस्पी पैदा करें। मसलन अगर मैं ही हूँ, मान लीजिए मेरे पड़ोस में अगर 5 बच्चे हैं तो ठीक है, अगर आपके पड़ोस में 10 बच्चे हैं तो उनमें से 10 लोग तो पढ़ रहे होंगे ऐसी जगह पर कि भाई ठीक है, रस्म अल्खत सीख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ जगह अगर उसका इंतज़ाम नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को बुलाएं। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ किताबें अलिफ बेते जो तीन दो तीन लैंग्वेजेस में जिसमें सिखाया जाता है, मतलब हिंदी से उर्दू सीखिए, इंग्लिश से उर्दू सीखिए, इस तरह की किताबें खरीद के हम बच्चों में तकसीम कर सकते हैं और ये दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं कि भाई आप आइए, जब हमारे पास वक्त है वो वक्त हम उन्हें दे दें और उनको उस वक्त में उर्दू सिखाएं।
1: तो सामाइन, ये थी मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा, जिन्होंने हमें उर्दू रस्म अलखत के मौजू पर अहम और कारामद मालूमात फराहम की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से मुतला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामाइन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त, आदाब।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, DRM, DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडे, ढोलक पर इनके साथ संगतकार हैं मंगला प्रसाद, बैंजो संगतकार

कार्यक्रम लोक संगीत में अभी आपने सुना कहरवा। कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडे। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में लाचारी।

अभी आपने सुना लचारी कार्यक्रम। लोक संगीत में आवाज थी अमलेश कुमार पांडे की, ढोलक संगत मंगल प्रसाद और बैंजो संगतकार जी।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइगर 3 फिल्म का ये गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, संगीत प्रीतम का, और इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: हम।
1: अभी आपने सुना टाइगर 3 फिल्म से ये गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की, संगीत प्रीतम का, और इस गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए सुनते हैं फिल्म जवान से अगला गीत, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की, म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का, और इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।

फिल्म जवान से अभी आपने सुना इस गीत को। आवाजें थी अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की, म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदन और गाने के बोल लिखे हैं कुमार ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, लापता लेडीज फिल्म से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार प्रशांत पांडे और संगीतकार राम संपत।

लापता लेडीज फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार प्रशांत पांडे और संगीतकार राम संपत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार में अगला गीत डंकी फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म डंकी से ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में अगला गीत, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

अभी आपने सुना रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ये गीत। इस गीत में आवाजें थीं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, ब्रह्मास्त्र फिल्म से। इस गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म ब्रह्मास्त्र से ये गीत। इस गीत में आवाज़ थी अरिजीत सिंह की और गाने के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं एक था टाइगर फिल्म से इस गीत को। इस गीत में आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह ने, गाने के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत सोहेल सेन का।

फिल्म एक था टाइगर, जिससे सुना आपने ये गीत। इस गीत में आवाज दी है, दी थी सुखविंदर सिंह ने, गाने के बोल लिखे थे नीलेश मिश्रा ने और संगीत सोहेल सेन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं गदर 2 फिल्म से अगला गीत। इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा ने, गीतकार सईद कादरी, संगीत मिथुन का।

गदर टू से अभी आपने सुना इस गीत को, इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा ने, गीतकार सईद कादरी, संगीत मिथुन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, ये जवानी है दीवानी, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत प्रीतम का और गाने के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अभी आपने सुना ये जवानी है दीवानी फिल्म से इस गीत को। इसमें आवाज़ें दी थी अरिजीत सिंह ने, संगीत प्रीतम और गाने के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार का अगला गीत फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से।

अभी आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी थी आतिफ असलम ने, संगीत तनिष्क बागाची और गाने के बोल लिखे थे अराफात महमूद और तनिष्क बागाची ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म एनिमल से।

अभी आपने सुना एनिमल फिल्म से ये गीत। इस गीत में आवाज थी अरिजीत सिंह की, संगीत श्रेयस पुराणिक का और गाने के बोल लिखे थे सिद्धार्थ और गरिमा ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म भेड़िया से। इसमें आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर ने। इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत सचिन जिगर का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म भेड़िया से ये गीत, आवाजें अरिजीत सिंह, सचिन जिगर। गाने के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत सचिन जिगर का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार का आखिरी गीत, फिल्म

वार से। इस गाने में आवाज़ें दी हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने, संगीत विशाल शेखर का और शब्द रचना कुमार की।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ और कुछ ही पलों का इंतजार लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए आपका अपना खास कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

तो लीजिए इंतजार हुआ खत्म और लेकर हाजिर हो गए हैं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज के दिन इस वक्त ये कार्यक्रम आधारित होता है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर। हमारे पुराने श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन कहीं आप अगर नए हैं तो आपके लिए आइए बता देते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905519981, यानी 7905519981। और आज आपको बता दें कि किन फिल्मों के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। तो आज की फिल्में हैं सिलसिला, रजिया सुल्तान, आप तो ऐसे ना थे,

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। सिलसिला फिल्म का ये गीत अभी आपने कार्यक्रम के आरंभ में सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थीं, जावेद अख्तर के बोल थे, शिवहरि का संगीत था। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमारे पास फरमाइश भेजी उनके नाम हम आपको बता दें। ये गीत सुना आपने और इसके लिए फरमाइश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला नवारकर, विशाल नवारकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुहरकर। और ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। जमाने ज़िला गाजीपुर से इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने। छत्तीसगढ़ पलारी से इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा ने। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्ज़ापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर ने। और ये रज़ाक मोहम्मद और समीम बेगम हैं, साथ में इरफान खान है, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। और सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी। नारवा इंद्रोका जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी, गणेश चौक रातान नाडा जोधपुर राजस्थान से हैं नरेंद्र भाटी, वीड़ा भाटी। गणेश चौक से एक बार फिर से आपका ही ये हमें संदेश मिला। दतेरेगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और ये हैं आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, कछुआ कला शाहजहांपुर से। ये हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीस सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा। और ये है दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव, कयूब शाह। और ग्राम बहुरापोस्त दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीना सिंह। और ये है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन। और ये हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, मीना मस्कीन, आशा आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और ये है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला।

यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी, और ये जौनपुर से हैं यूशु रीशु मौर्य, और आप लिखते हैं आज हमारे यहाँ 2 बजे रात को बहुत बढ़िया बारिश हुई है जी, इधर भी बहुत अच्छी बारिश हुई और मौसम भी ठंडा है। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सदर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख और समस्त राजे राजे जाधव देशमुख और वायाल परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा व ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। और ये दिनारा रोहतास से हैं प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सौरव कुमार, अर्पित कुमार, हर्षित कुमार और वैभव कुमार। और ये हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रिया ठाकुर, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापर, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। और ये रेशम नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। और महाराज कीर्तन गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी जी हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। सिद्धार्थ नगर दरियालपुर बाबली से हैं गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। और ये हैं मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहर जहानाज, साकिया शाइन नाज और नाजिया नूर साज। ये हम बहनों को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करिए जी, शामिल हो गया आपका। और ये आप हमें व्हाट्सअप करती हैं नूर महल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से। और इसी गीत के लिए दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी। और ये हैं बालो छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली पूजा तामोरिया और राधिका के साथ साथ प्रभा देवी तामोरिया। तो अब ये व्हाट्सएप आप लगातार आप हमें कर रहे हैं, इसकी हमें खुशी है और शुक्रिया जी इससे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं और रज़िया सुल्तानपुर का ये गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जहाँ निसार अख्तर का लिखा ये गीत है खयाम का संगीत।

लता मंगेशकर की इस सुरीली आवाज़ में जानिसार अख्तर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे रज़िया सुल्तान फिल्म से, और ये खूबसूरत संगीत खयाम का था। और इस गीत के लिए हमारे जिन श्रोताओं ने हमें व्हाट्सएप किया उनके नाम हम आपको बता दें। ये मलेर कोटवा पंजाब से हैं एमडी इरफान खान, मुस्कान खातून, रौनक खातून और बेबी आलिया। और इसी गीत को सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने भी सुनना चाहा। और ये है फातिमा कॉलोनी

महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजियान सीर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमद नगर से ही जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर और मिखाइल जैन मुजावर जी, और ये आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेंद्र शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा, और ये हैं वलीदपुर मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भागल यादव। ये हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम बोड़के, और ये हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन। ये हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये है पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और ये हैं ग्राम लसुड़िया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कीर्तिका और रमेश चंद्र डांगी जी। ये सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। ये बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमरा बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मिराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। चंडीगढ़ से हैं सतीश वर्मा, नेत्रपाल सिंह, वाराणसी से परवेज अहमद, और ये हैं धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, प्यारी गुड़िया और बेदा सिंह जी। ये है छिंदवाड़ा गांगीवाड़ा छिंदवाड़ा से रमनदीप, राजदीप परिहार, अपर्णा परिहार, सुधा परिहार और आपके परिवार के सभी सदस्य। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, और साथ में है बोहड़ा गांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। वडिंग खेड़ा पंजाब से है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, और ये है जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से है देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवन जी, और ये हैं धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू श्री वैष्णव, ग्राम भीलखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। ये लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानिक मानिकपुरी। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी, और ये हैं बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने और वैष्णवी ढोमने, और साथ में हैं

चल ढोमने अर्जुन गवर्नेकर जी और धीरज सावशेर जी अस्तुतपुरा जिला मऊ से हैं। मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से हैं। आज़ाद अली अनवर और रिजवान परवीन के साथ साथ अब्दुल्ला आज़ाद। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत, ये है फिल्म आप तो ऐसे नाथी का गीत, मनहर की आवाज़ निदा फाजली का गीत और ऊषा खन्ना का संगीत।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। व्हाट्सएप संदेश पर आधारित इस कार्यक्रम को आज आपकी सेवा में लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। और अभी आपने सुना मनहर दास की आवाज़, मनहर की आवाज़ में आप तो ऐसे नाते फिल्म का गीत, निदा फाजली ने जिसे लिखा था, उषा खन्ना का संगीत था और पसंद आप सब श्रोताओं की। ये हैं बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री जी, आपका तो इस कार्यक्रम में पहले भी संदेश हमें शामिल कर लिया है। यही वजह होती है कि हम मैसेज जो आपके आते हैं और लगातार कुछ श्रोता बार बार करते हैं तो बार बार उसके चक्कर में हम लोग उसको खोलते हैं, फिर देखते हैं कि आपका आ चुका है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप कार्यक्रम में एक बार अपना संदेश भेज चुके हैं और अगर शामिल हो गया है तो कृपा कर उसे दोबारा न भेजें, और नहीं भी शामिल हुआ है थोड़ा इंतज़ार करें, फिलहाल आगे बढ़िए। और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोल, निखित कांगड़ा और तन्वी बोध का भी हमें व्हाट्सअप संदेश मिला। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा का भी हमें ये संदेश मिला। और ये हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, आश्विन और विपुल कामड़े। और ये हैं बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से मन भावन, शोभा, कपिल, नैन, सत्यनारायण, हुंदकी बाई और बागरी जी। साथ में है हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी।

श्रीमती मनोहर बाई जी और प्रभुलाल बागरी जी, और ये हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया जी, और ये है सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। ये हैं रविंदर सिंह छाबड़ा।

ये हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, और ये गांधी चौक बाड़मेड़ राजस्थान से हैं बबलेश्वर पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान जी, डांगरी से हैं बाबू राम जयपाल जी, और साथ में हैं खलीफों की बाड़ी से खुदा बख्श खलीफा जी, और ये हैं पारसमढ़ी। आपने एक श्रोता क्लब बनाया है, ये हैं गांधी चौक बाड़मेड़ राजस्थान से बबलेश्वर पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी, रामदेवरा से। एक बार आपका हम इस कार्यक्रम में पहले भी संदेश शामिल कर चुके हैं। ये हैं नरीश साहू, पुनारत यादव और खुमान सिंह पटेल, मोहरेगा राजिम छत्तीसगढ़ से, और ये हैं आयशा जी और साहिन फातमा, अनीस फातमा, सहन हसन, जहरा, वसीम फातमा, मुबारकपुर तालाब से, और ये हैं कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी और शाहिद हसन आजमी जी। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष कुमार चंदर और पांडुरंग कुम्हार जी, और ये हैं आर एस अश्वनी, शोभनाथ अवस्थी और आपके दोस्त शिवराजपुर चुनार मिर्ज़ापुर से। ये कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, और ये है मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबसुम। रायपुर अनेई जिला बनारस से है मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफरीन परवीन, और ये हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा जी। ये हैं मोहम्मद, ये है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ जी, ओम प्रकाश गायकवाड़ और साईं गायकवाड़, और ये हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी के साथ अमित आहूजा। ये विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति हैं जलालीपुरा वाराणसी से। ये अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा भाई, सुजान सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव जी। ये है मालियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। ये है बटिंडा रोड मर्डी डाबली से राजेंद्र नारंग जी, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तान्या नारंग जी, और गांव हांसीखेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा जी। ये है छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्रजक्ता घोड़के, वैशाली घोड़के, गायत्री जी और साथ में हैं यज्ञेश जी, और ये हैं मुनीब सिंह जी हैं ये जमानिया दुरौली से, और ये हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से प्रेम साहू, पूजा साहू, दुष्यंत साहू, जमुना देवी साहू और बेबी आराध्या साहू। नेहरू चौक पैठड़ से हैं सुरेश, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिल, अनीता

जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव जी, ये हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर जी आपका, तो हमने इस कार्यक्रम में पहले भी संदेश शामिल कर लिया और फिर से आपका संदेश हमें मिला, लेकिन फिर भी शुक्रिया आपका। और ये हैं मुंबई से अनुज बड़जातिया, शमशूल खान जी और अनुराग बेनारा जी, ये गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंदार, अभियानंदार, परमानंदार और राजा बाजार भिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी, और ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाद अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और ये हैं रामशकल चौधरी, चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से। और ये हैं कच्छ गुजरात से गंगा गोविंद पड़कर, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल विजय, विराट रमेश, महेश जयंती जी। और ये है पुरानी भिलाई 314 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नशीद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य। ये हैं माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत है सलामी फिल्म से। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें हैं इस गीत में, मदन पाल का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत।

सुनिए सलामी फिल्म का ये गीत, और समय कम है तो आइए हम आपको बताते चलें कि इस गीत के लिए किन श्रोताओं ने हमें व्हाट्सअप किया। खैल बाजार पानीपत से नरेश मेहरोत्रा, लक्ष्मी मेहरोत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का ने हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी हमें संदेश भेजा। सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान और बेबी गर्वी। देखिए यही होता है, आप लोग का नाम पढ़ते हैं और फिर अच्छा। भोपालगढ़ जोधपुर राजस्थान से हैं किशोर भाटी, ममता भाटी, राजेश दाधीच, हसमुख जी और साथ में सुभाष प्रजापति, और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगा राजस्थान से, और ये है देवकली तकिया जौनपुर से भोलानाथ यादव, डॉक्टर राजेश यादव जी और साथ में है अनंतु यादव और कमलेश प्रजापति, और नर्मदा पार्क मंगवेड़ा से है मास्टर अमित पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल जी, और ये हसीन ये मरहरा दरवाज़ा एटा से है नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नावीर हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी। सेक्टर सिकंदरा राव से हैं मुनीब अब्बासी और इरशद अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। MLB रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खन्ना, पप्पी, किरण खुराना, आपका भी शायद, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और SK पप्पी खुराना जी, और ये हैं पारसमढ़ी जी, गांधी चौक एक बार आपका इसमें शामिल हो चुका है। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मस्किन परिवार का भी संदेश शामिल हो चुका है, और ये हैं सिद्धार्थ गुंडानी जी, आपका संदेश मिला, और ये श्री

काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विज्ञति जी हैं, साथ में विनायक जी हैं, मोहिनी मोहित जी और एक प्यारी प्यारी कोका रानी जी, और ये हैं मुदीक चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी जी, और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, और गुजरात गांधी ग्राम से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश चौधरी जी, और ये नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश गायकवाड़ और साई गायकवाड़ जी, ये टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा जी हैं, और साथ में आपका भी संदेश इसमें शामिल हो चुका है। ये बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़क जी और नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और नाहिटा जी, और ये हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया जी, और ये हैं गांव डाकघर नियमताबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत जी, लवप्रीत कौर, करमजीत जी कौर, और ये हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी देवी, चांदनी कुमारी और नंदिनी जी, और मुबारकपुर पुरानी बस्ती से हैं राशिद जमाल जी, शाहिद जमाल, दानिश जमाल, आरिफ जमाल और सहजेब अनवर जी, और ये हैं समर्थ दादा देठे पाटिल, ये हैं बुलडाड़ा महाराष्ट्र से, साथ में हैं भागवत जी, श्रीमती लक्ष्मी जी और कुमारी सानिका जी, और ये जगदीश धाकड़ नायमा जी हैं, श्रीमती रज्जूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी जी हैं, ये रतमाल एमपी मध्य प्रदेश से, दिलदार नगर गाजीपुर से जनार्दन जी, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह और कयूब शाह जी, आपका भी संदेश मिल चुका है, और ये हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी और लव दीवान के साथ साथ राधे भारवी डिंगरा जी, और पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू जी हैं कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से, और जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसबी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल जी, और ये हैं बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमापुर जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, और शाह कुटीर मुगल सराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, और ये है हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल, और गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, और हमारे और श्रोता हैं पुरानी भिलाई से, एक बार फिर से आप सिद्दीकी परिवार का हमें संदेश मिला, ये वाइट फील्ड बेंगलुरु से है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण जी और संस्कृत के साथ साथ पौरुष, और चलते चलते हम आपको बता दें ये बेघरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव के साथ साथ शौर्य नामदेव का भी हमें संदेश मिला, और नगीना फिल्म का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और बताते चलेंगे कि इस गीत को किन श्रोताओं ने पसंद किया, मोहम्मद अजीज की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से इस गीत को मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और मोहम्मद अल्फात के साथ साथ अल्ताफ के साथ साथ नीलोफर फातिमा ने पसंद किया। विशाल मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुर इमलैया जौनपुर से इस गीत को सुनकर पसंद करते हैं।

राम शकल चौधरी चोचक बाजार जिला गाजीपुर से। जिला गाजीपुर से ही हैं श्री किशन कुमार कुशवाहा, हृदय नारायण गुप्ता और छवि नाथ शर्मा।

पिंड वाला चौक गौरैया जलंधर से है, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भारत मक्कड़ के साथ साथ कमल साहनी जी।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित आज का हमारा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। बस थोड़ी देर में सुनेंगे आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरे

0: हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत।
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है, मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और

0: खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

कुछ डर लगने लगता।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं।

0: खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस

0: साक्षात्कार में बुलाया गया है।
1: धन्यवाद श्रीमान।
0: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
1: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
0: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
1: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
0: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जौबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जौबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जौबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहें। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली। जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए

0: उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली, आओ महाकाली।
1: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
1: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
0: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
1: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नू।
1: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गई।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। थोड़ी देर में सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें
11: 0542227658।
5: आइए सुनिए सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं आराधना विश्वकर्मा। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में प्रस्तुत है सूरदास की ये रचना।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार आराधना विश्वकर्मा। अभी आपने सुना आपके स्वर में सूरदास की ये रचना, और अब प्रस्तुत है मीराबाई की एक रचना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थी आराधना विश्वकर्मा। मीराबाई की इस रचना के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं आशीष कुमार मिश्र। कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में प्रस्तुत है राग खमाज में ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय गायन। कलाकार हैं आशीष कुमार मिश्र। अभी आपने सुना राग हमाज में ठुमरी, और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं राग पहाड़ी में दादरा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय गायन। कलाकार थे आशीष कुमार मिश्र। आपके साथ तबले पर संगति प्रतीक कुमार मिश्र की थी। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय

0: सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले आइए दे जानकारी आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पहली सूचना कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है और इस सूचना के अनुसार रिया जो पुत्री है शिवलाल उर्फ रामलाल की, निवासी है बालीपुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी की। रिया की उम्र है 16 वर्ष, लंबाई 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये 26 अप्रैल 2026 से लापता है। घटना वाले दिन आपका पहनावा फिरोजी टी शर्ट और सफेद पैंट था। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नजदीकी थाना या थाना बड़ा गांव अथवा इस नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं। नंबर है 7991893244 यानी 7991893244। ये अगली सूचना है थाना शक्ति नगर जनपद सोनभद्र से प्राप्त और इस सूचना के अनुसार सत्य प्रकाश सोनी जो पुत्र हैं स्वर्गीय जगवल के और निवासी हैं ग्राम खड़िया बाजार थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र के। सत्य प्रकाश सोनी की उम्र है करीब 77 वर्ष, लंबाई औसतन और रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है। ये 5 जनवरी 2026 सुबह 9 बजे से लापता है। घटना वाले दिन आपका पहनावा कुछ इस प्रकार था, सफेद शर्ट काला पैंट और स्पोर्ट्स शू। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नजदीकी थाना या थाना शक्ति नगर जनपद सोनभद्र को सूचना देने का कष्ट करें। और ये एक आखिरी सूचना है कार्यालय उप जिलाधिकारी पिपरा थाना बभनी जनपद सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मंजू कुमारी जो पत्नी है शिव मूरत की, निवासी हैं ग्राम खेमिरिया थाना बभनी जनपद सोनभद्र की, मंजू कुमारी की उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5

फुट 2 इंच, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। ये 25 मार्च 2026 दिन में 12 बजे से लापता है। घटना वाले दिन आपका पहनावा पीले रंग की साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल था। यदि इनके संबंध में आपको कोई सूचना मिले तो अपने नजदीकी थाना या थाना बभनी जनपद सोनभद्र को सूचना देने का कष्ट करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती और कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको दे दें संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा क्लैरिनेट वादन। कलाकार होंगे गोपाल दास। आराधना विश्वकर्मा के गाए भजनों का आनंद आप लीजिएगा रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात 9:30 पर। और कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा के साथ साथ सुनेंगे बातचीत। धान की नर्सरी डालने हेतु तैयारी, इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी से। और साथ में लोकगीत कलाकार होंगे अमलेश कुमार पांडे। इनके गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे रोज की तरह शाम 5:15 पर, जिसमें सुनी आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, सूचना और जानकारी। और अब से थोड़ी देर बाद बहनों के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में चर्चा के साथ साथ सुनिएगा कहानी सपना खुली आंखों का, कहानीकार जया टंडन। दिन में 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। रसरंग कार्यक्रम शाम 7:31 पर और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम रसमाधुरी। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है, ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
0: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़रई इजलास के इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,763.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तला तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई

दिल्ली में एआई सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में एआई तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाक़े सीबीएसई सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा बारहवीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वज़ीर-ए-आला ने आज लखनऊ में साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुलाय अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेरे तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्जे हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर कुछ ही पलों का इंतजार लेकर होते हैं हाजिर आपके लिए बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी लेकर।

0: के साथ
1: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी और मैं हूं आपकी रेडियो सखी शीला।
5: और मैं हूं संध्या। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आज हर उम्र के लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी सोशल मीडिया और हमारा मानसिक स्वास्थ्य।

0: जी हाँ संध्या जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे। देखिए, आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, और रात को सोने से पहले भी फ़ोन देखकर ही सोते हैं। या यूँ कहें कि कितने लोगों को तो ऐसा है कि उन्हें नींद भी तभी आती है जब वो फ़ोन चेक करते हैं या फ़ोन देखते हैं। रील्स, पोस्ट, लाइक्स और फॉलोअर्स की इस दुनिया ने हमें जोड़ा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी बढ़ाया है और परिवार से दूरियां भी बढ़ाई हैं, है ना?
1: बिल्कुल शीला जी, पहले लोग ना अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने के लिए ना उनके घर जाते थे और पत्र व्यवहार से बात करते थे, और पत्रों को पढ़ने में भी बड़ा मजा आता था। आते थे तुरंत पढ़ते थे, और फिर जब मन करता था तो फिर दोबारा भी पढ़ लेते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है घंटों स्क्रीन पर रहने से हमारे मन और सोच पर क्या असर पड़ता है?
0: सही कहा आपने संध्या जी। कई बार लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइक या शेयर देखकर खुद को कम समझने लगते हैं, और धीरे धीरे ये तुलना तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी का कारण भी बन सकती है।
1: खासकर ये समस्याएं युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे कि कम लाइक्स आने पर दुखी होना, बार बार नोटिफिकेशन को चेक करना, ये सब कहीं ना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
0: हाँ, और देखिए, जो आपने नोटिफिकेशन चेक करने की बात कही है ना, तो अक्सर हम घर पे भी अपने बच्चों को देखते रहते हैं कि तुरंत मोबाइल में मैसेज आया और वो लोग मोबाइल उठाकर चेक करते रहते हैं नोटिफिकेशन कि किसका मैसेज है। तो कहीं एक तरह से इरिटेशन होता है कि बच्चे बार बार मोबाइल क्यों देखते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन मजाक उड़ाना या बुरा व्यवहार भी लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर बना सकता है, और कई लोग अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं लेकिन अपनी भावनाएं किसी से साझा नहीं करते,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि देखिए वो मोबाइल पे ही समय बिताते हैं तो उन्हें लगता है उनका हर कुछ मोबाइल ही है, तो अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए ना, ऐसा है ना, सोशल मीडिया बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ, लेकिन बस यही है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और सीखने की नई नई जानकारियां भी मिलती हैं, और लोगों से जो है ना बहुत जल्दी ही जुड़ने का अच्छा माध्यम भी है।
0: हाँ, कम समय में हम बहुत अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं, हमारा नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा लोगों तक हो सकता है। लेकिन पता है, जैसे कि एक संतुलन होना चाहिए, हर चीज़ की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो हमें अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। एक संतुलन अगर हम बना के चलें मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जैसे एक स्क्रीन टाइम को सीमित रखिए, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, ताकि थोड़ा सा आपका जो मोबाइल से, कंप्यूटर से दूरियां भी बढ़े और अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और ज़रूरत पड़ने पर आप जिससे भी आपको पसंद हो उससे बात करिए, देखिए आपका मन हल्का हो जाएगा और मानसिक सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बिल्कुल। और हमें ये भी समझना चाहिए ना कि असली ज़िंदगी किसी फिल्टर से नहीं चलती है, हर व्यक्ति की अपनी कहानी और परेशानियां तो होती ही रहती हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में मुझे लगता है ना कि हमें मीडिया से थोड़े दिन जो है थोड़ा सा तो जरूर दूर रहना चाहिए, जिससे डिप्रेशन ना पैदा हो। और लगातार ऑनलाइन रहने से ना दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और नकारात्मक भी हो जाता है एकदम मन, तो थोड़ा शांति भंग ना हो इसलिए हम लोगों को कभी कभी ना मोबाइल कुछ घंटे या एक दिन के लिए जरूर बंद कर देना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: कोशिश करना जी कि हमें इतने समय से इतने समय तक देखना है, फिर ये
1: जी
0: काम करना है, इनसे बात करना है, थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए जाना है। और एक जैसे कहते हैं ना कि रील्स लाइफ और रियल लाइफ में जो फर्क होता है, क्योंकि ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं, हम पूरी तरह इसे गलत भी नहीं कह सकते, जो इसमें दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं। तो सखियों, सोशल मीडिया से जुड़िए, उससे वहाँ उसका उपयोग उतना ही करिए जो आपकी जितना कि आपकी सेहत के लिए अच्छा हो और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, क्योंकि अपनी सेहत सर्वोपरि है। तो थोड़ा सा हम लोग भी माहौल को चेंज करते हैं, मूड चेंज करते हैं और
1: बिल्कुल
0: सखियों को एक गीत सुनवा देते हैं।

0: चेक।
1: जाना पड़ेगा।
2: अरे गेम छोड़ के?
1: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है?
2: अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को।
1: कैसे?
2: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से

0: प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: सखियों देखिए, हमने आपसे बातें भी की और एक गीत भी सुनवाया और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कहानी। शीर्षक है सपना खुली आंखों का, कहानीकार हैं जया टंडन। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी।
5: रात्रि के लगभग 11 बजे फोन की घंटी की आवाज़ सुनकर ज्योति ने रिसीवर उठाया तो उसे भाई राहुल की आवाज़ सुनाई दी। ज्योति, मैं राहुल बोल रहा हूँ, तुम बच्चे जीजा जी सब ठीक होंगे? अच्छा सुनो ज्योति, 30 जून को मेरी शादी की तारीख निकली है, तुम सबको एक माह पहले ही बता रहा हूँ। तुम जीजा जी बच्चे सभी जल्दी आने का कार्यक्रम बनाना और बाद में भी कुछ दिन रुक कर ही जाना। ज्योति तो भाई से अपने मनमाफिक खबर सुनकर इतनी खुश थी जैसे तपस्या के बाद उसे मनचाहा वरदान मिल गया हो। समय कम ही था, भाई की शादी की तैयारियों में ज्योति पूरी तन्मयता से जुट गई। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था, शादी का दिन भी कुछ ही वक्त में आ ही गया। सभी रस्मों के साथ पूरे विधि विधान से साक्षी के रूप में ज्योति की नई भाभी घर आ गई। शादी के घर में हंसी ठिठोली, मन का खाना, सभी बड़ों का साथ, हंसी मजाक तो चलता ही है। ज्योति भी माँ के घर की खुशियों में ऐसे रम गई कि उसका अपना भी घर है, अब तो वह अपने मायके में मेहमान है जैसे भूल ही गई थी। किंतु उसे वापस तो अपने घर जाना ही होगा, लेकिन हाँ यह सोचकर वह संतुष्ट थी कि उसकी भाभी के आने से ज्योति के माता पिता का ख्याल रखने वाला घर में कोई अपना होगा और अब सामान्य लोगों की भांति उसके माता पिता भी अपनी बेटी के घर कुछ समय के लिए आ सकेंगे और कभी माँ भी ज्योति के पास आकर रह सकेगी, क्योंकि घर पर पिता की भाई की देखभाल साक्षी भाभी कर लेंगी। इन्हीं सब खुशियों को मन में लेकर ज्योति अपनी ससुराल वापस आ गई। वापस अपने घर आकर रोजाना के गृह कार्य, बच्चों की देखभाल, पति का ध्यान रखना, इन सब में वे वापस रम गई थी। सुबह शाम कुछ खाली समय में वह माँ से फोन पर बात करती, भाभी पिता का हालचाल लेती रहती थी। अपने भाई भाभी से बात करके उसे सुकून मिलता था कि उसके मायके में भी सब ठीक है, घर में साक्षी भाभी ने सबको अपना लिया है, वह पूरे परिवार का ध्यान भी रख रही हैं, जैसे ज्योति ने भी तो अपने सासू माँ और ससुर जी को अपने माता पिता की तरह ही सम्मान और आदर दिया था। इन सभी खुशियों को वह अपने मन में संजोकर नहीं रखती थी। अपनी किटी पार्टी की महिला मित्रों, अपने सत्संग की मित्रों, सभी के साथ साझा करती रहती थी कि वह कितनी भाग्यशाली है, कितनी खुशकिस्मत है कि उसे भी साक्षी जैसी व्यवहार कुशल भावी मिली है। बच्चों से भी वह उसकी साक्षी मामी के विषय में बातें करती, बच्चे भी मम्मी की खुशी में खुश रहते। राहुल से भी जब ज्योति बातें करती तो यही कहती कि राहुल भाई साक्षी भाभी का खूब ध्यान रखना,

0: सा मिलकर रहो। महिला तो घर की धुरी होती है, उसका सम्मान रखो तो वह भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। राहुल भी ज्योति को यही बताता कि ज्योति, अरे तुम आश्वस्त रहो, साक्षी और माँ पापा सभी एक दूसरे के साथ खुश हैं, मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अरे ज्योति, पापा तो इतने प्रसन्न हैं कि कई बार मम्मी को ही उन्हें समझाना पड़ता है कि तुम ससुर हो, बच्चों जैसी बातें मत करो, घर में बहू है, अपनी बुजुर्गियत का ध्यान रखो। पापा भी साक्षी को अपनी बहू ही नहीं बेटी का ही सम्मान देते हैं। सब बढ़िया चल रहा है ज्योति, तुम चिंता मत करो, राहुल ने कहा। भाई की बातें सुनकर ज्योति की आंखें भर आती और वह यही कहती कि भाई तुम सब कुशल से रहो। अच्छा हाँ, अब तो माँ को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ो, पापा तो ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे क्योंकि दुकान का भी काम है। माँ का मन भी कुछ बदलेगा, एक जगह रहते हुए कुछ बदलाव अच्छा लगता है, समझे भाई राहुल? राहुल कहता, हाँ देखते हैं, अभी कुछ समय रुक जाओ, यह कहकर बात बदल देता था। एक दिन जब ज्योति माँ से बातें कर रही थी कि माँ कुछ दिन मेरे पास आकर रह जाओ, तो माँ ने मनमाने ढंग से बात बदल दी। तब ज्योति ने माँ से कहा, अच्छा माँ, पापा को फोन दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। माँ ने पापा को फोन दे दिया। औपचारिक बातों के बाद ज्योति बोली, पापा कुछ दिनों के लिए मम्मी को मेरे पास भेज दीजिए, बच्चे भी नानी के साथ रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, माँ का भी बदलाव होगा। साक्षी भाभी भी अब तो घर पर है, वह भाई और आपका ख्याल रख लेंगी। तब पिता ने ज्योति से कहा कि साक्षी और राहुल एक अलग घर में रहने की योजना बना रहे हैं, यहाँ हम सभी साथ मिलकर रहने में उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही थी, दोनों को एकांत नहीं मिल रहा था। बेटा ज्योति सही भी है, सभी को अपना अपना स्पेस चाहिए, सभी की अपनी समझ है और सोचने की भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। इतना कहकर भारी आवाज के साथ पिता ने फोन काट दिया। पिता की बात सुनकर ज्योति जैसे सदमे में थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसको तो जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा, इतना कुछ हो गया और मैं यहाँ माता पिता भाई भाभी की खुशहाली के सपने संजो रही हूँ, आशाओं के ताने बाने बुन रही हूँ, एक सामान्य सी खुशी की ही तो चाह थी जो सभी करते हैं। ज्योति को राहुल की शादी का वह प्रसंग याद आ गया जिसकी सूचना मात्र से वह पुलकित हो उठी थी, उसके रोम रोम में खुशी की लहर मचलने लगी थी और आज मात्र कुछ ही समय में सारी प्रसन्नता बालू के घरौंदे की तरह बिखर गई। आशा का बांध अब टूट चुका था, मन में उदासी की नदी पूरे वेग से बह रही थी। ज्योति की खुशियों का सपना टूट कर बिखर गया था, आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि शायद वह सपना खुली आंखों का था।
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे कहानी। कहानी का विषय था सपना खुली आंखों का और कहानीकार थी जया टंडन जी।
2: संध्या जी, देखिए जैसे इस कहानी का शीर्षक है ना, सपना खुली आंखों का, तो कई बार सपने हम खुली आंखों से देखते हैं तो हंसाते भी हैं, लेकिन कई बार सपना जो टूट जाता है खुली आंखों से, हम कुछ भी सोच लेते हैं तो मन को दुखी भी कर देते हैं। और बात करें अगर हम मौसम की, तो गर्मी तो पड़ रही है, हालांकि आज मौसम अच्छा हो गया है ना, और लेकिन गर्मियों में जो सूती वस्त्र हैं, सूती परिधान, वो बहुत ही आरामदायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और आप जानती है ना, ये सूती वस्त्र ना पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये सांस भी लेते हैं, आरामदायक भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना प्राकृतिक गुणों के कारण जो है ना, इसको बहुत आराम से जो हम लोग पहनते हैं।

0: और संभाल के भी रख लेते हैं, और हर मौसम में ये चल जाता है, और गर्मियों में ये शरीर को ठंडा भी रखता है और पसीना भी सूखता है, जबकि सर्दियों में अंदर से गर्म रखने में भी ये मदद करता है।
1: और सूती वस्त्रों में बहुत सारी खासियत है, जैसे कि सूती वस्त्र हवा को आर पार जाने की जगह देता है, जिससे कि उमस नहीं होता है और पसीने को सोख कर शरीर को सूखा और ठंडा रखता है।
0: बिल्कुल। और ये ना कपास के पौधों से प्राकृतिक रूप से बनाने के कारण ना ये जो है ना बहुत एलर्जिक वो जो है ना सोखता है, और ये जितने भी संवेदनशील त्वचाएं होती है ना उनके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। और सूती कपड़ा हर डिजाइन में भी आसानी से ढल जाता है। लोग कहते हैं ना कि सूती कपड़ों से डिजाइने नहीं बन पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों, सूती कपड़े से भी हम चाहे जैसे भी डिजाइने बनवा सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: और देखिए कोई अगर चिलचिलाती धूप में हल्के रंग के कोई सूती कपड़ा, कॉटन सूट

0: अगर चिलचिलाती धूप में हल्के रंग के कोई सूती कपड़ा, कॉटन सूट या कुर्ती पहन के निकले तो आंखों को सुकून मिलता है ना। और देखिए ये पानी में भीगने पर भी मजबूत ही रहता है, ऐसा नहीं है कि इसका फाइबर बहुत आर्टिफिशियल या कमज़ोर होता है। और सूती कपड़े शुरू से चलन में आ रहे हैं और अब दिन पे दिन इसकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ रही है।
1: हाँ, और हमारी सखियों को ना खास करके ये जरूर ध्यान रखना है, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना और बुजुर्ग लोग होते हैं, इनकी त्वचा बहुत ही मुलायम होती है, तो उन लोगों को सूती वस्त्र ही जो है पहनाने चाहिए, जिससे उनकी त्वचा पे किसी तरह की रेशेस ना पड़े या कोई इस तरह की कोई बीमारी भी ना हो और उन्हें आराम भी मिले।
0: जैसे कि अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं खासतौर पे उमस और गर्मी वाले मौसम में तो त्वचा पे देखिए खुजली, एलर्जी, ये सारी दिक्कतें होने लगती है, या फिर अगर इचिंग हो जाती है। तो अगर सूती कपड़ा पहनते हैं तो उससे आराम मिलता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको? सूती वस्त्रों में सबसे बड़ी खासियत है कि सूती कपड़ा पूरी तरह से नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है, यानी हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना गया है।
1: बिल्कुल सही सीन है जी।
0: और
1: हाँ
0: देखिए हमने बात तो कर ही रहे हैं हम, और आगे भी बातें करेंगे सखियों से, लेकिन एक प्यारा सा मीठा सा गीत पहले सुनवा देते हैं सखियों को।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिए ये कार्यक्रम लोक संगीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं अमलेश कुमार पांडे। अभी आपने सुना आपके स्वर में निर्गुण। निर्गुण के बाद कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कहरवा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार थे अमलेश कुमार पांडे। इनके गए लोकगीत आप कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। मिड डे न्यूज का प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 meters, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की

0: मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
2: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में

0: हिंदी के प्रभावी सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया।

महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की।

नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा, और आप सुन रहे हैं आपका चहेता शो एक ही कलाकार। दोस्तों, आज हमारा कारवां रुकने जा रहा है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सुनहरे पन्ने पर जिसने जिंदगी के सबसे गहरे दर्शन को सीधे, सरल और आम इंसान के शब्दों में पिरो दिया। राज कपूर उन्हें प्यार से कविराज कहते थे, तो दुनिया उन्हें जन कवि के नाम से जानती है। जी हाँ, आज के हमारे एक ही कलाकार हैं अतुलनीय अमर गीतकार शैलेंद्र। शैलेंद्र साहब का लिखा गाना सिर्फ गाना नहीं था, वो आम आदमी के सुख दुख और उसकी उम्मीदों का एक आईना था। आइए सफर की शुरुआत करते हैं उनके एक ऐसे सदाबहार तराने से जो आज भी हर मुसाफिर की जुबा पर गुनगुनाता है।

वाह, दिल बहलता है जिससे वो राज है, क्या बात कही थी शैलेंद्र जी ने। दोस्तों, शैलेंद्र जी के शब्दों में जो सादगी थी वो सीधे उनके जीवन के संघर्षों से निकल कर आई थी। 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में जन्मे शैलेंद्र का बचपन बहुत गरीबी में बीता। जब वे मुंबई आए तो माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में एक वेल्डिंग अप्रेंटिस के रूप में काम करते थे। दिन भर लोहे और आग के बीच काम करना और रातों को कविताएं लिखना। एक बार एक कवि सम्मेलन में वो अपनी मशहूर कविता जलता है पंजाब पढ़ रहे थे। वहीं मौजूद थे शोमैन राज कपूर। राज साहब को कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने शैलेंद्र से इसे फिल्म आग के लिए खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन खुददार शैलेंद्र ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपनी कविताएं बेचता नहीं हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शैलेंद्र के घर में पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो वे खुद राज कपूर के पास गए। राज साहब ने बिना एक पल गवाए उनकी मदद की और यहीं से शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा की सबसे ऐतिहासिक जोड़ी की, राज कपूर, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र। फिल्म बरसात में उन्होंने अपना पहला गाना लिखा और वो गाना इतिहास बन गया।

आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार शैलेंद्र को। दोस्तों, शैलेंद्र की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे बिना भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किए दिल की सबसे गहरी बात कह जाते थे। आवारा, श्री 420 और अनाड़ी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने राज कपूर को वैश्विक पहचान दिलाई। रूस और चीन की गलियों में जब लोग मेरा जूता है जापानी गाते थे तो वो असल में शैलेंद्र के लिखे जादुई बोलों को ही जी रहे होते थे। शैलेंद्र साहब ने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को भी बेहद खूबसूरत अंदाज में ढाला। चलिए आपको उनके लिखे एक ऐसे ही रूमानी और सदाबहार गीत की तरफ ले चलते हैं जिसकी सादगी में ही उसका असली जादू छुपा है।

दोस्तों, शैलेंद्र सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वे एक बेहतरीन इंसान और दोस्त भी थे। अपनी इसी दोस्ती और कला के प्रति दीवानगी के कारण उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया, तीसरी कसम। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनी ये फिल्म कलात्मक रूप से एक मास्टरपीस थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे शुरुआती सफलता नहीं मिली। इस बात के सदमे और कर्ज के बोझ ने शैलेंद्र जी को अंदर से तोड़ दिया। मात्र 43 साल की उम्र में 14 दिसंबर 1966 को इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। विडंबना देखिए, ये वही दिन था जो उनके सबसे अजीज दोस्त राज कपूर का जन्मदिन था। शैलेंद्र चले गए, लेकिन उनका आखिरी लिखा हुआ गाना आज भी हमें जिंदगी जीने का सबसे बड़ा फलसफा सिखाता है।

हाथ किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

शैलेंद्र के गीतों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? सादगी। वो कठिन और भारी भरकम शब्दों के जाल में नहीं उलझते थे। वो लिखते थे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जिंदगी और मौत के इस शाश्वत सच को इतनी सादगी से भला कौन कह सकता है। चाहे गाइड फिल्म का वहां कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहां हो, या बंदनी का ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, उनके हर गीत में एक तड़प थी, एक गहरा एहसास था। ऐसा लगता था जैसे वो हमारे ही दिल की बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस महान रचनाकार की जिंदगी का आखिरी पन्ना बेहद दर्दनाक रहा। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनाई तीसरी कसम। ये फिल्म नहीं, शैलेंद्र के दिल का टुकड़ा थी। राज कपूर और वहीदा रहमान ने इसमें अद्भुत अभिनय किया। फिल्म कलात्मक रूप से एक शाहकार बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के क्रूर नियमों ने शैलेंद्र को तोड़ दिया। अपनों के धोखे और कर्ज के बोझ ने इस बेहद संवेदनशील कवि के दिल पर गहरा घाव किया। शैलेंद्र आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जब तक इस दुनिया में मोहब्बत रहेगी, जब तक कोई राहगीर अपनी मंजिल ढूंढेगा, जब तक कोई दिल टूटेगा और जब तक कोई जिंदगी से प्यार करेगा, शैलेंद्र के गीत अमर रहेंगे। वो कह गए थे, किताबें बहुत सी, फसाने बहुत से, मगर ये कहानी है सदियों पुरानी।

कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। सचमुच शैलेंद्र साहब, आप भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके लिखे ये अनमोल गीत जब तक ये दुनिया रहेगी, इंसानी दिलों को धड़काते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे शो एक ही कलाकार में बस इतना ही। आपको गीतकार शैलेंद्र के जीवन पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अब अपनी दोस्त शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की थी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम एफ 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में शाम की 5 बजे हैं, आरंभ होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आई सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म अर्जुन पटियाला से, आवाज सचेत टंडन की है, गीत लिखा है प्रिया सरैया ने और संगीत सचिन जिगर का।

अब आइए फिल्म पद्मावत का एक गीत सुने। आवाज शिवम पाठक की है। एम तुराज ने इस गीत को लिखा है। संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

अभी आप फिल्म पद्मावत का गीत सुन रहे थे। अब आइए फिल्म एस बॉस का एक गीत सुने। आवाज अभिजीत भट्टाचार्य की है। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित।

और अब कार्यक्रम के अंत में ऐसे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अब्बास कटका के लिखाए गीत, संगीत रचना संजीव दर्शन की है और फिल्म का नाम एक्सक्यूज मी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। कभी किसी का त्याग तो कभी किसी का सेवा भाव। और जब बात देश, समाज या मानवता की हो तो जिम्मेदारी और समर्पण अपने आप सबसे बड़ा संदेश बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के साथ एक बार फिर हाजिर हो गए हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ,
0: जहां मैं हूं आपके साथ श्रुति
1: और मैं हूं शिवानी। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: जन कल्याण जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दोस्तों, दुनिया में शांति बनाए रखना केवल शब्दों से नहीं बल्कि साहस, धैर्य और सेवा भाव से संभव होता है। कई सैनिक ऐसे भी होते हैं जो अपने देश से दूर रहकर मानवता और शांति की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, और ऐसे ही वीर शांति सैनिकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
3: बिल्कुल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों यानी कि पीस कीपर्स के अमूल्य योगदान और उनके बलिदान को सम्मान देना है। इसी के साथ इस दिन के उद्देश्य की बात करें तो उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने शांति अभियानों में अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ये भी आपको जानना चाहिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेवा करने वाले सभी सैनिकों और नागरिकों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना करना भी आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है।
2: इसी के साथ दोस्तों, आज के दिन के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 में एक प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक रूप से इस दिवस की शुरुआत की थी। और आपको बता दें कि 29 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि सन 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन शुरू हुआ था।
3: आपको बता दें दोस्तों कि इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यू

0: न्यूयॉर्क में एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें कर्तव्य की पालना के दौरान जान गंवाने वाले शांति सैनिकों को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरस्क जोल्ड पदक से सम्मानित किया जाता है। वहीं इस शांति मिशन में भारत के योगदान की बात करें दोस्तों, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है। 1950 से अब तक भारत ने विभिन्न देशों में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपने सैनिकों को तैनात किया है। और जैसा बात करें दोस्तों कि कोई भी सैनिक कई कठिन परिस्थितियों में रहकर भी मानवता और शांति की रक्षा का कार्य करते हैं, उनका साहस और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है।
1: और दोस्तों, आज का दिन एक और महान व्यक्तित्व की याद दिलाता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि भी है।
0: दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। हम सभी इनके बारे में पढ़ते हैं और हमें ये मालूम होगा, उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए।
1: उनकी सादगी और देश सेवा की भावना आज भी युवाओं को प्रेरित करती है।
0: सच ही कहा गया है कि महान लोग अपने कार्यों से हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं।
1: और हमें भी अपने जीवन में समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
0: आज के दिन हम उन्हें याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों अब समय हो चला है हमारे कार्यक्रम के उस खास हिस्से का जहां हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा के उन हस्तियों के जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
2: बिल्कुल दोस्तों, सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जहां एक कलाकार अपने असल चरित्र को खोकर किसी चरित्र की भूमिका को सिने पर्दे पर उतारता है और उसकी वो भूमिका, वो अदाकारी हमारे दिलों में इस कदर बस जाती है कि हम उनके फैन हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सिने दर्पण की ओर और झांकते हैं आज के हमारे अभिनेता के सिनेमाई दुनिया में।
1: और आज सिने दर्पण में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता जितेंद्र की।
2: जी हाँ, आपके और हमारे सभी के प्यारे जितेंद्र। दोस्तों, जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर था। उन्होंने अपने अभिनय और शानदार डांस स्टाइल से दर्शकों के दिलों में अलग पहचान बनाई।
1: सफेद जूते और ऊर्जा से भरपूर डांस के कारण उन्हें बॉलीवुड का जंपिंग जैक भी कहा जाता था।
2: फर्ज, हिम्मत वाला, तोहफा और नगीना जैसे फिल्मों में उनकी अदाकारी को खूब पसंद किया गया।
1: खास बात यह थी कि उनमें कि उन्होंने हर किरदार को बहुत सहज और जीवंत तरीके से निभाया है।
2: उनकी मेहनत और अनुशासन आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा माने जाते हैं।
1: तो दोस्तों, यही था आज का सिने दर्पण जहां हमने याद किया हिंदी सिनेमा के शानदार अभिनेता जितेंद्र को।
2: तो चलिए सुनते हैं इनके एक खूबसूरत गीत को

तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आपके फेवरेट अभिनेता जितेंद्र के लिए बातें और उनका ये सदाबहार गीत? हम आशा करते हैं आपको हमारी बातें और जो मनोरंजन भरे गीत हम सुना रहे हैं पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब बातें हो जाएं थोड़ी ज्ञानवर्धक और आपके काम की। तो अब समय हो चला है हमारे यूथ डायरी का, जहां हम सीखते हैं कुछ नए और रोचक शब्द, जिसमें आज का हमारा हिंदी शब्द है अधिसंरचना। जी हाँ, आज का हिंदी शब्द है अधिसंरचना, जिसका अर्थ होता है किसी भी देश या

व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, जैसे सड़कें, पुल, बिजली और संचार व्यवस्था। इसके पर्यायवाची शब्द की बात करें तो होगा संरचना, आधार व्यवस्था और बुनियादी ढांचा। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिसंरचना का हम वाक्य प्रयोग कैसे करें। अरे तो चिंता मत करिए, मैं हूं ना बता रही हूं। मैं अधिसंरचना का वाक्य प्रयोग इस प्रकार करूंगी दोस्तों कि किसी भी देश

0: स्वीकार करूंगी दोस्तों कि किसी भी देश के विकास में मजबूत अधिसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: वाह शिवानी, बहुत ही सुंदर शब्द बताया तुमने। अब इसी के साथ बढ़ते हैं इंग्लिश के वर्ड की ओर, और आज का इंग्लिश वर्ड है सेंश्योर, CENSURE। सेंश्योर का अर्थ होता है किसी की कड़ी आलोचना या निंदा करना, और इसके सिनोनिम्स है क्रिटिसिज्म, कॉन्डिमनेशन और डिसअप्रूवल। और इसे एक सेंटेंस में समझे तो हम कह सकते हैं, द टीचर एक्सप्रेस्ड सेंश्योर ओवर इन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम।
0: अगर ध्यान दे दोस्तों तो दोनों शब्द हमें जिम्मेदारी और सुधार का संदेश देते हैं।
1: इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए और गलतियों से सीखते रहना चाहिए।
0: और दोस्तों इस वर्ष भारतीय प्रसारण जगत के लिए भी बेहद खास अवसर है। आकाशवाणी
1: ने अपने गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ा है।
0: जी हाँ, लगभग 9 दशकों से आकाशवाणी समाचार, संगीत, संस्कृति और जन जागरूकता के माध्यम से देश के करोड़ों श्रोताओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है।
1: गांवों से लेकर शहरों तक और नई पीढ़ी से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक आकाशवाणी ने हमेशा हर आवाज और हर भावना को मंच दिया है।
0: यही कारण है कि आज भी रेडियो की मधुर आवाज लोगों के दिलों में उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी वर्षों पहले हुआ करती थी।
1: और हमें गर्व है कि हम भी आकाशवाणी के सुंदर और ऐतिहासिक सफर का एक छोटा सा हिस्सा है।
0: छोटा सा हिस्सा नहीं, हम इसका हिस्सा बन पाए हैं, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है श्रुति।
1: बिल्कुल,
0: और इससे जुड़े रहना और आगे भी यहाँ जुड़े रहकर आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब बारी है आज की QOTD की, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे की। लेकिन इससे पहले बारी है कल के सवाल का और उसका सही जवाब जानकर जो विजेता बने हैं उनका नाम जानने की। तो हमने आपसे कल सवाल किया था कि हाल ही में प्राग शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, जिसका सही जवाब है ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम। और जिन्होंने ये सही जवाब दिया है उनका नाम है प्रवीण चौहान, खरगोन मध्य प्रदेश से। मैं प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आप आज के इस कल के पूछे गए सवाल के इकलौते विजेता हैं, क्योंकि और किसी ने जवाब नहीं दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सवाल सुना और उसका जवाब दिया। आप हमसे जुड़े रहे और हम आशा करते हैं कि आज भी जुड़े ही होंगे। तो आज का भी सवाल सुनिएगा और सही जवाब देकर कल के विनर्स बनिएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का सवाल।
1: तो हमारा आज का आपका प्रश्न है, पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 किस देश ने लागू या लॉन्च किया। सवाल एक बार फिर से सुनिएगा, पहला वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 किस देश ने लॉन्च किया।
0: तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth.ir वाराणसी पर, या फिर आप हमें हमारा जवाब मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youth.airvns@gmail.com।

0: दोस्तों, हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ खास यादें छोड़ जाता है।
1: और इन्हीं यादों को ताजा करने के लिए हम लेकर आते हैं इतिहास में आज का दिन।
0: साल 1953 में इसी दिन एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे।
1: दोस्तों, यह उपलब्धि साहस, मेहनत और आत्मविश्वास का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि साल 1913 में प्रसिद्ध संगीतकार एसटी बर्मन का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारतीय संगीत को कई यादगार धुन दी है।
0: दोस्तों, इसी के साथ 29 मई खेल जगत के लिए भी खास माना जाता है। इसी दिन कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाई गई, जिन्होंने खिलाड़ियों को नई प्रेरणा दी।
1: दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी 29 मई का दिन महत्वपूर्ण रहा है। इसी दिन कई नई खोजों और प्रयोगों ने दुनिया को आधुनिकता की ओर आगे बढ़ाने में योगदान दिया था।
0: इतिहास हमें केवल पुरानी बातें नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि साहस, मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: और यही प्रेरणा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। जैसे हौसला देती है कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हमारे करियर की हमारी टेंशन हो, तो भी इतिहास ही हमारे लिए मददगार साबित होती है, क्योंकि इतिहास से जुड़े सवाल जो हमारे करियर में, जिसके लिए हमने परीक्षा का फॉर्म भरा है, उसमें इतिहास के सवाल आते हैं। और आपके करियर से जुड़े रोजगार के अवसर कहाँ हैं, ये भी तो हम लेकर आते हैं। तो आज कैसे छूट सकती है आपकी ये जानकारी? तो दोस्तों, अब बात करते हैं देश के युवाओं के लिए सामने आए एक बड़े रोजगार अवसर की।
0: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन

0: यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2026 के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12,256 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
1: दोस्तों आपको बता दें कि ये आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
0: अब योग्यता की बात करें तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों के अनुसार योग्यता और चयन प्रक्रिया भी तय की गई है।
1: वहीं आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित की गई है।
0: इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना जरूर पढ़ ले और अधिक जानकारी के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।

0: जी दोस्तों, दो मस्ताने चले जिंदगी मनाने। तो जिंदगी बनाना बहुत जरूरी है, जैसा कि करियर की हम बात कर रहे थे और करियर में अवसर की भी बात हमने बता दी। लेकिन हमने सोचा, हम सभी लोग ना जब करियर बनाने की सोचते हैं तो बहुत उलझन में रहते हैं और बहुत टेंशन में भी रहते हैं। तो सोचा कि कुछ ऐसा आपके लिए गीत बजा दिया जाए जिससे आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और इन दो मस्तानों की तरह आप भी अपनी जिंदगी बनाने निकल पड़िए, लेकिन तनाव से रहित होकर, मतलब थोड़ा एकदम फ्रेश माइंड से अपने करियर को बनाने में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों, स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।
1: बिल्कुल। और शिवानी, तुम्हें पता है, स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर आदत शायद ही कोई हो।
0: योग हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और मन को शांति प्रदान करता है।
1: नियमित योग करने से तनाव भी कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर भी फिट रहता है।
0: इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में दोस्तों थोड़ा समय योग के लिए जरूर निकालना चाहिए।
1: क्योंकि सच ही कहा गया है, योग से रहो निरोग।
0: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप आज सुन रहे थे मुझे यानी शिवानी को।
1: और मुझे यानी श्रुति।
0: तो आज के बातचीत का सिलसिला यहीं समाप्त होता है और जानकारियों का सिलसिला आपका और आपकी युववाणी का यूं ही बना रहेगा। और कल भी आप मिलेंगे अपने नए युवा साथियों से। आज तो शिवानी और श्रुति के साथ आप अपना युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। अब आपसे फिर मुलाकात होगी युववाणी के किसी अगले अंक में। अब हमें दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

अभिवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी, हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम एफ 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं भोजपुरी में समाचार आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय आज देश के सज्जो उच्च न्यायालय के फैसला सुरक्षित रखले के 3 महीना के भीतर ओके सुनौले का निर्देश देले हो। न्यायालय कहलस कि फैसलन में देरी से याचिका कर्तन के अपूर्णीय क्षति हो सकेला। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ ही 12 राज्यन के 10,000 करोड़ रुपया से बेसी का राशि जारी कैले। यह मौका पर श्री चौहान कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हमें कि देश में कौनो गरीब मनई कच्चा मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ में 392 करोड़ रुपया से बेसी लागत का 114 परियोजनन के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। यह मौका पर वहां के कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पछिला 12 साल में लोग बदलत भारत के देखले हम हैं। श्री योगी कहने कि प्रदेश सरकारों बिना रुकले या बिना थकले लगातार विकास का कार्य कर रही हो।
3: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 2.5 घंटे 3 घंटे में लखनऊ। यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, और बाढ़ से बचाव के लिए सरकार कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था के लेके एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। इस दौरान मुख्यमंत्री कहले कि पुलिसिंग खाली कानून व्यवस्था ले सीमित नहीं हो। वहां के कहले कि आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधन का समझ आ फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग का बुनियादी जरूरत बन गई बा। मुख्यमंत्री कहले कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एक रूपता आ पारदर्शिता सुनिश्चित कैल जाए। हमीरपुर जिला में काल देर रात आयल तूफान के दौरान बन रहल पुल गिरले से 6 गो मजूरहन का मौत हो गई। मोराकंदर से कंदौर गांव ले फैलल ई पुल बेतवा नदी पर बनावल जात रहल। ई घटना देर रात 2 बजे ओ समय भइल जब बरखा के बीचे कुछ मजूरहा हाइड्रोलिक मशीन के नीचे खड़ा रहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ए हादसा पर गहरा शोक जतौले हमें। वहां के मृतक लोगिन के परिजनन के 5-5 लाख रुपया आ घाही लोगिन के 50-50 हजार रुपया के आर्थिक सहायता उपलब्ध करवले का निर्देश देले हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का पुण्यतिथि मनावल जा रहा हो। यह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उनके मूर्ति पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि दिए हैं। पत्रकार लोगों से बतियावत वहां के चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व आ कृतित्व के बारे में चर्चा कैली।
4: देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था

0: कि देश के विकास का रास्ता गांव और गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है।
1: मौसम विभाग प्रदेश में बिहनहु कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने के ऑरेंज अलर्ट जारी कैले हो। सतही कई जगहिन पर गरज चमक के साथे बरखा भइले आ बौछार पड़ले के संभावना जतावल गइल बा। एह बीचे प्रदेश के पूर्वी जिलन में बीतल रात से आंधी पानी के साथे भइल बरखा के बादे आज दिन में मौसम साफ रहल। कई जगहिन पर दिन में हल्का है घाम निकरल, बाकी लोग भीषण उमस आ गर्मी से राहत महसूस कैले। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी वाराणसी है, मीडियम इक्विमीटर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। कार्यक्रम विवरण में आइए आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा क्लैरिनेट वादन, कलाकार होंगे गोपाल दास। अंजुमन कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में आराधना विश्वकर्मा की आवाज में भजन सुनिएगा। के जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा धान की नर्सरी डालने हेतु तैयारी विषय पर डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। साथ ही साथ किसान भाई सुनेंगे अमलेश कुमार पांडे का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे अभी यानी शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में, रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में और रात्रि 10:00। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात्रि 10:00 सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनेगा कल सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर और कल दिन 12:45 पर सुनेगा गायन, कलाकार होंगे मोहित साहनी। कल प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:35 पर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कारण लक्षण और बचाव विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अनुराधा रॉय। श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर।

कल सुबह 7 बजे सुनेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। मधुरिमा सुनेगा कल सुबह 8:45 पर, कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगी गीतांजलि मौर्य। इनके गाए लोकगीत आप कल शाम 6:30 पर किस जगत कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। साथ ही साथ किस जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर बीज प्रौद्योगिकी का महत्व विषय पर डॉक्टर अर्चना सान्याल से सतीश कुमार यादव की बातचीत भी सुन सकेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर कलाकार होंगी नेहा चटर्जी और इसी कार्यक्रम में कल रात्रि 8 बजे कलाकार होंगी बेगम अख्तर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार सुनेगा कल सुबह 10 बजे और कल दिन 11 बजे सुनेगा हेलो फोन इन फरमाइश। प्रस्तुति शैलेश दुबे की होगी। कह कैसा सुनेगा कल दिन 12 बजे और रंजुमन सुनेगा कल रात्रि 9:30 पर। अंगनैया कार्यक्रम में कल दिन 1:15 पर ग्रामीण बहने सुनेंगी सशक्त नारी उन्नत समाज विषय पर डॉक्टर माधवी तिवारी की वार्ता चर्चा और गीत संगीत। ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप कार्यक्रम विवरण में सुन रहे थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। अब ऐसे फिल्म संगीत।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।

यज्ञ तुमने लिया था फिल्म नसीब से। आवाजें थी कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुर की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए फिल्म आपके साथ का एक गीत सुने। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत आनंद बख्शी का और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी वाराणसी है। 6:20 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: पंचो राम राम।
1: राम जीतन भैया।
0: हाँ सुधू भैया,
1: देखा हो इतना पंचायती में जौन हो विज्ञानी भैया लोग आवन है, तरह तरह की जानकारी देना, नई नई तकनीकी बतावन है, विधि विधान कुल। बाकी तो अभी भी एक बात हो ना कि दऊ के मिजाज पर कोनो विज्ञान का समझ ला कि प्रभाव नहीं बा।
0: मतलब कह चाहत हो कि जोन दऊ हुआन
1: हाँ
0: उन पर हम इंसान लोगन का, आदमी लोगन का जोर ना लग सके।
1: अरे भाई अब काली के देख ला,
0: हाँ
1: जौन आंधी पानी आयल न, कितना समझ ला कि पेड़ उखड़ गई न, और समझ ला कि हम तो भाई पशुअन बदे के देखा छप्पर बनावत रही है ओकर, तो उड़ी गल हो बुझवै
0: अरे कहत ना
1: जल्ला,
0: है, बहुत ही जानी
1: बड़ा
0: रहल।
1: नुकसान भल। और समझ साजिश लगत रहा कि हाँ ऐसा हुई नहीं, एकाएक देखा मौसम के जो परिवर्तन भल उसे दऊ का मिजाज जो बदलल है, तो भाई पर कोनो बस नहीं ना बा कि
0: नहीं
1: रोक ले आनी पानी
0: नहीं हो।
1: न। तो कह का मतलब ई कभी कभी देखा है तो प्राकृतिक व्यवस्था होबे करी, बाकी कभी कभी जब असमय में हो जाला कि जब पानी चाहत हो तो पानी नहीं है, और जब नहीं चाहत हो तो बरस गई ना। अब समझ ला कि बोझा बांधल बा खेते में, अब पानी बरस गल डांट तो नरम हो जाए, कैसे दवाई है
0: सही कहते
1: तो
0: हो
1: ऐसा स्थिति जौन आवत हो, ई काहे के विचार एक पेपर करे के जरूरत हो जल
0: भैया,
1: ना।
0: बिचारा करक जो था। और एक चीज बताई सुधु भैया ना, यह सबसे हो आर्थिक रूप से आदमी बड़ा कमजोर हो जाते हुन, कैसे कैसे पैसा जुटावत हुन जाके, तब जाके छप्पर लेते हुन चाहे उछाव वाला चीज लेते हुन। लेकिन जब ये आंधी पानी में उड़ गल तो आदमी तो एकदम पूरा समझ लग कर्जे वाली
1: अरे
0: स्थिति में आ गए
1: भाई
0: ना।
1: हम कहे कि देखा कर्जा वाली जोन बात करत हुआ तो कर्जा खाली यही बदे के नहीं, अरे अपने बहुत सा ऐसा काम हुआ ना खेती किसानी बदे के, तो भाई देखा व्यवस्था बटले बा। ओकरे अलावा खेती किसानी से समय निकाल करके जोन भैया लोग रोजी रोजगार उद्योग व्यापार कुटीर जोन करे चाहत हुआ भाई, ओकरे बदे भी देखा अपने जोन देश के मुखिया हुआ उनके तरफ से जोन व्यवस्था कल गई हो न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: अच्छा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
1: जल न,
0: हाँ
1: यही बात के ध्यान में रख के जोन है योजना का बनावल गए हो कि भाई जीवन स्तर आदमी का सुधरे, आत्मनिर्भर बना है ना, अपने देश का बहुत सा युवा हो, बहुत सा ऐसा समझ ला कि महिला लोग हैं जोन की स्वावलंबी बने चाहत हैं, बाकी तो साधन का अभाव बा, उन्हें जानकारी भी बा, करे भी चाहत हैं बाकी साधन का अभाव बा, तो ऐसने लोग बदे दिखाई जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनावल गल हो कि कर्ज ले करके अपन काम का शुरुआत कर सकल।
0: तो भैया यह योजना नहीं बा, देखा ई योजना का मुख्य उद्देश्य ई बा कि आदमी मनई स्वावलंबी बने। अच्छा देखा स्वावलंबी के बात हो तो इमन बहुत ऐसा चीज़ जैसे छोटा मोटा दुकान आदमी खोला चाहला, जैसे चाय का दुकान भैल
1: हाँ
0: अपन भाई लोग जन खोला चाहे ना,
1: बिल्कुल
0: सिलाई कढ़ाई भैल, मोबाइल रिपेयरिंग भैल, मोबाइल बनावे वाला दुकान, ब्यूटी पार्लर भैल, ई रिक्शा वाला होल, डेयरी खेती और छोटा उद्योग कोनो भी, मतलब ओकरे
1: हाँ
0: बदे सरकार हमेशा खड़ा हो।
1: एकदम हो। और जेकर जैसा देखा योग्यता हो और जेकर जैसा रुचि हो है ना, उकरे हिसाब से भाई अगर केहू केहू के लगे देखा प्रशिक्षण भी बा, प्रशिक्षण ले ले बा और चाहत हो काम के करें
0: सही
1: है ना,
0: बात।
1: तो ओकरे बदे के देखा बहुत कम ब्याज दर पर ई जोन हो मुद्रा योजना के तहत जोन हो कर्ज उपलब्ध हो जाला
0: हाँ भैया
1: जल्ला।
0: देखा यह नहीं हो। अच्छा ये योजना शिशु लोन बदे
1: हाँ
0: मतलब
1: हाँ
0: छोट बच्चन बदे 50,000 तक आदमी लोन ले सकला, और किशोर के बदे देखा किशोर लोग 50,000 से 5 लाख तक के ले सकला, और तरुण लोन जोन होला 5 लाख से 10 लाख तक के।
1: भाई ये योजना पर निर्भर करला कि वो कौने श्रेणी में आवला, ये देखा तीन श्रेणी जोन बतौला है ना कि शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। भाई ये जो श्रेणी बनावल हो एमन जौन भी तू काम करे चाहत हुआ एकर एक प्रोजेक्ट बनावे के होला जल्ला, ये प्रोजेक्ट से ही पता चलला कि भाई कितना पैसा की जरूरत हो।

0: वो पैसा के हिसाब से वो तरह का लोन जो ना तो है मिल
1: मिल
0: जाला।
1: जाता है।
0: और एकरे बदे दिखा बहुत ज़्यादा गारंटी का भी जरूरत ना हो, जैसे बैंक से लेवे जाबा ना तब बहुत ज़्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़त जल्ला ना। और एकरे बाद जौन हो एमन जौन औपचारिकता बा वो खाली मूल रूप से कि तुहें तो देखा जौन 6 महीना का अपने बैंक का जौन खाता बा ओकर स्टेटमेंट देवे के हुई जल्ला, अपन जौन हो पेन कार्ड देवे के हुई, आधार कार्ड देवे के हुई, माने ये जो सामान्य बात हो ना ई दे करके अपन। अब भाई एकरे विषय में और विस्तार से जानकारी चाहत हुआ तो भाई बैंक वाले भैया लोगन के देखा जोन लोन देवे के बा वो बताइए कि नहीं ई कागज तुम्हें और चाहिए,
1: चाहिए
0: लेकिन बहुत ज़्यादा मन परेशान हुआ के जरूरत
1: ना
0: नहीं
1: हो।
0: हो।
1: अच्छा पहले रहल तो भैया ऐसे उसे लोगन से कर्जा उर्जा ले आदमी तो एक का तेरा जो है लोन ले
0: अरे
1: मतलब
0: कितना
1: कर्जा मांग मतलब कि आपका ब्याज ले हाँ
0: कितना शोषण हो
1: शोषण
0: पहले।
1: हो यहाँ तक
0: बिल्कुल
1: कि उन्हीं से नहीं उनके लड़का उनके मतलब खानदाना से पूरा वसूली करें।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: से ही
0: बिल्कुल
1: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आयल बा
0: हाँ
1: तो अपने लोगन के बड़ा राहत बा। हम तो कहें कि भाई योजना का लाभ लें अपने सरकारी बैंक जैसे कोनो प्राइवेट बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक भल संस्था का कोनो छोट मोट बैंक भल यानी कहे के मतलब कि कोनो सरकारी बैंक है वहाँ जाकर के जरूरी दस्तावेज दे करके ये योजना का लाभ ले सकन है।
0: बिल्कुल। तो हम कहे हे देखा योजना का लाभ ले बदे के पंच भैया लोगन के जागरूक हुए के पड़ी। हम तो भाई तनी सा ओके समझ ला कि दिशा बतावे के जरूरत पड़ा ला ना कि भाई इन लोगों के जानकारी दे दिली कि देखा इस तरह का योजना चलत हो। अब जेकर जेकर जरूरत हुई वो भाई अपने नज़दीक के ब्लॉक पर जाई चाहे बैंक में जाई जाए के पता करें और ओकर लाभ उठावें,
1: और साथ ही साथ मोबाइल नंबर हो एक चाहिए।
0: जरूरी हो तो भाई हाथे हाथे बा हो।
1: हाँ
0: हाँ तो हम कही कि है देखा आगे अब ही बत कही अपने पंचायती में और हुई ना, बाकी तो पहले ही संदेश सुन लिया उसके बाद।
1: ठीक सुनवा दे भैया
2: चेक जाना पड़ेगा।
3: अरे गेम छोड़ के
2: 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है, कंप्लेंट करनी है।
3: अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को।
2: कैसे?
3: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: जितन भैया
1: हाँ सुधु भैया
0: भाई देखा जानकारी के बात जो संदेश रहल है ये भी हो गल और हम कही अब अपने खेती किसानी की तरफ चल जाए
1: चलल
0: है
1: जा
0: ना।
1: भैया
0: और खेती किसानी में देखा अपन गेहूं का फसल कटले के बाद जोताई करके छोड़ल बा खेत और अगले फसल के तैयारी में कुछ लोग भैया लगल हुआ कुछ लोग भैया देखा उड़द मूंग भी लगौले रहना है, बाकी जो मुख्य फसल है धान तो ये विषय पर जौन हो ना जानकारी हो जाए के चाहिए। और खाली है देखा पंच भैया लोगों का ध्यान मत दा प्याछे देखा अपने डॉक्टर भैया भी आ गए ना हो के देखबा
1: अरे हाँ हाँ डॉक्टर
0: है
1: भैया आ गए ना।
0: तो जगह बनावा डॉक्टर भैया के तो उन्हों बुलावा और हम कहें कि बतिया ले डॉक्टर भैया से कि जो अगली फसल मुख्य हो कि धान वाली एकर नर्सरी डाले बदे का करे के चाहिए का तैयारी होए के चाहिए है ना। यही विषय पर हम बतियावा जैसे पंच भैया लोग सुना तो हूँ छुपा जा है ना कि धान का नर्सरी डाले बदे का तैयारी करे के हो। डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी भैया देखा पंचायती में आ गए हुआ
1: बतिया लग गया
0: डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हो कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा भदोही में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि अब जैसे कि खेत तक खाली हो गल बा
1: जी
0: अब अगली फसल जो धान के लेवे के हो
1: जी जी
0: तो एकरे बदे पहले जो नर्सरी तैयार होले
1: जी
0: तो इन नर्सरी काहे आवश्यक होला और कैसे एक तैयारी करे के चाहिए ये विषय पर
1: जी
0: जानकारी दें हमारे किसान भैया लोगन के।
1: किसान भाइयों जिस भूभाग पर हम धान की नर्सरी डालते हैं उसे बीज सया कहते हैं और बीज सया आपके खेत का वह भूभाग है जिसमें जो है एक अच्छी गुणवत्तायुक्त और निरोग पौध उत्पन्न कर सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे विभाग जो खरपतवार रोग से मुक्त हो और आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में सतत आपूर्ति होता रहे तो ऐसे जो है स्थान को हम चयन करें
0: जी
1: जिससे एक स्वस्थ पौधों को जो है हम प्राप्त कर सकें उसके धान की खेती में प्रयोग कर सकें।
0: तो कैसन भूमि हो चाहिए कैसन स्थान का चुनाव करें?
1: भूमि का चुनाव किसान भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे भूभाग का आप चयन करें

0: जहाँ पानी ना लगता हो, पानी का निकास प्रॉपर होना चाहिए और उस भूमि में जीवांश की मात्रा भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जिसमें जीवांश की मात्रा ज्यादा रहता है उसमें समस्त पोषक तत्वों की आपूर्ति बहुत आसानी से हो जाता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और अच्छी वृद्धि विकास होती है।
1: अच्छा, तो चयन कैले के बाद भूमि

0: एक पलेवा कर लें, पलेवा
1: हाँ
0: करने के बाद जो खरपतवार जगता उगता है
1: हाँ
0: उसको पुनः जुताई करके उसको समाप्त कर लें।
1: जी
0: इसके बाद जो है आप उसको जो है, इसके बाद आता है प्रजातियों का चयन करना होता है। किसान भाई जिस प्रजातियों का आप, बहुत सारी प्रजातियां हैं, आप अल्पकालिक प्रजातियां लगाना चाहते हैं कि मध्यम लगाना चाहते हैं कि विलंब वाली प्रजातियां लगाना चाहते हैं, उसी अनुसार आप अपने प्रजातियों का चयन करें। महीन लगाना चाहते हैं, मोटा लगाना चाहते हैं, जो भी धान की प्रजातियां लगाना चाहते हैं उसकी आप जो है चयन करें।
1: तो
0: इस
1: एक प्रजाति के जो हो चयन कइले के बाद का है कि बेड पर लगाओ को ना, बेड कैसे तैयार करें?
0: हाँ, बेड बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेड से अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बहुत ही स्वस्थ और अच्छी नर्सरी प्राप्त हो सकती है। जो बेड का जो साइज होता है किसान भाई, वो 1 से 1.5 मीटर × 5 मीटर रखना चाहिए। इसमें 1 हेक्टेयर के लगभग आपको 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, भूभाग की
1: अच्छा
0: आवश्यकता होगी। और हम बिस्वा में बात करते हैं तो 6.5 बिस्वा लगभग उसमें आपका भूमि का क्षेत्रफल होगा। और बेड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 100 बेड आपको बनेगा आसपास।
1: अच्छा
0: तो इस तरीके से 100 बेड तैयार करके आप अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसका जो माकूल समय है नर्सरी डालने का किसान भाइयों, ये है अगर हम लंबी अवधि की फसल लेना चाहते हैं, जैसे जैसे MTU 70-29 की बात हम करते हैं या PBT 52-04 की बात करते हैं, तो इसका जो है हम मई के लास्ट में नर्सरी डाल देते हैं। और मई के लास्ट में नर्सरी डालना सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे जो मध्यम प्रजातियां ज़्यादातर किसान लगाते हैं लगभग 120 से 135 दिन की, उसको 15 जून तक हर हालत में हमको नर्सरी डाल देना चाहिए।
1: माने एकदम सही समय चलत हो इस
0: जी
1: समय।
0: जी जी
1: तो इबन बीज का मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसे
0: हाँ,
1: निर्धारित
0: ये
1: करें?
0: बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बीज की मात्रा,
1: जी
0: किसान भाई बहुत ज़्यादा ज़्यादा बीज लगाते हैं जो अपना लागत बढ़ा देते हैं। बीज बहुत ज़्यादा लगाने से, बहुत घनी नर्सरी होने से हमारी जो है नर्सरी स्वस्थ नहीं रहेगी, निरोग नहीं रहेगी। स्वस्थ और निरोग नर्सरी प्राप्त करने के लिए किसान भाई जो संस्तुत मात्रा में वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है, जैसे अगर हम महीन धान लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 किलो पर्याप्त मात्रा में होता है।
1: अच्छा
0: हाँ, अगर महीन धान, क्योंकि खेती बाड़ी में आजकल किसान भाई महीन धान ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन अगर बेचने के लिए लगा रहे हैं तो मोटा धान लगाते हैं। मोटा धान आप 30 किलो लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऊसर में लगाने जा रहे हैं तो ऊसर में आप जो है 40 किलो धान डाल सकते हैं ऊसर के
1: अच्छा
0: लिए, क्योंकि वहाँ जो है कुछ ऊसर में जहाँ आप धान रुपाई करेंगे वहाँ बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं,
1: अच्छा
0: तो
1: वहाँ
0: ज़्यादा
1: बीज दर थोड़ा ज़्यादा रखे
0: ज़्यादा
1: चाहिए।
0: रखते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई बीज की मात्रा सुनिश्चित करें, बहुत ज़्यादा बीज ना लगाएं जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है।
1: तो बुआई से पहले जो हो बीज शोधन की भी जरूरत पड़त हुई
0: जी जी जी
1: जी,
0: जी
1: तो कैसे बीज शोधन कैसे करें?
0: बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। बीज शोधन के लिए किसान भाई ये ज़रूरी है कि बहुत सारे जो रोग लगते हैं उससे जो है छुटकारा पाने के लिए, जैसे जीवाणु झुलसा हुआ, झोंका रोग हुआ, शीत झुलसा हुआ, इत्यादि से बचाव के लिए 25 किलो अगर धान का बीज है उसमें लगभग 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और
1: अच्छा
0: 60 ग्राम कार्बनडाजिम को लगभग 30 से 35 लीटर पानी में घोल करके उसको रख दीजिए
1: छाई में
0: छाये में। इसके बाद जो है रात भर भिगो दें। रात भर भिगोने के पश्चात
1: अच्छा
0: उसे दूसरे दिन आप जो है 24 से 36 घंटे के लिए छायेदार स्थल पर रखकर उसको जो है टाट के बोरे से, जूट के बोरे से ढक दीजिए, उसको नमी बने रहे। और वो जो है आप देखेंगे 36 घंटे के बाद उसमें अंकुरित बीज हो जाएगा।
1: अच्छा
0: और अंकुरित बीज को आप जो आपका नर्सरी तैयार है, नर्सरी हमेशा किसान भाई ध्यान रखें कि शाम के समय ही डालें, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत होती है, पानी गर्म हो जाती है, इसलिए शाम के समय ही नर्सरी डालें। इसके बाद नर्सरी में एक चीज़ किसान भाई ध्यान रखें, पोषण तत्व प्रबंधन की। 1 बिस्वा नर्सरी क्षेत्रफल के लिए किसान भाई 2 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम DAP, 1.9 किलोग्राम यूरिया और 800 ग्राम जो है म्यूरेटा पोटाश और 200 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति बिस्वा के दर से आप जो है नर्सरी में धान की बुआई के पहले।

0: पर्याप्त
1: खेत
0: मात्रा
1: के
0: में दे।
1: तैयारी के समय जो वक्त बेड बनावत हो वो समय दें।
0: हाँ उस समय दीजिए, या बेड
1: अच्छा।
0: बनाते समय भी दे सकते हैं, और फ्लैट में अगर आप लगा रहे हैं तो उस समय भी आप पोषक तत्व जरूर दें, तो इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और अच्छे रहेंगे।
1: अच्छा, ये बीज शोधन तो मतलब बात समझ में आई, और ये जो खेत के तैयारी आप बतौना बेड बनाओ के वक्त, तो का
0: जी
1: भूमि के शोधन की भी जरूरत पड़े ले?
0: बहुत जरूरी है। आजकल देखा जा रहा है कि धान के खेतों में रोग बहुत ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि भूमि की जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है प्रतिरक्षा प्रणाली काफी क्षीण होती जा रही है, क्योंकि हम लगातार रासायनिक खाद देते आ रहे हैं, जैविक खाद नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक कवकनाशी है सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, उसका 0.5% का जो है 2.5 किलोग्राम मात्रा अगर आपके खेतों में शीत झुलता या कंडुआ रोग की आने की संभावना है, तो इसके लिए टाइकोडर्मा बिरिडी 1% का 2.5 किलोग्राम मात्रा और 2.5 किलोग्राम सूडोमोनास फ्लोरेंसिस को 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर उसको 10 दिन के लिए किसी छायादार स्थल पर रख दीजिए और पानी का छींटा देते रहिए, उसमें नमी रहना चाहिए। इसके बाद आप रोपाई के पहले आप खेतों में तैयारी करते समय उसको डाल दीजिए, तो इससे जो रोग की संभावना होती है काफी क्षीण हो जाती है।
1: अच्छा, तो ये बतावें कि बुआई का विधि का हो, एक चाहिए कैसे बोएं बेड पर
0: बेड
1: धान?
0: बुआई के समय, जैसे बुआई तो बेड में करना है, छिटकाव इससे ही करते हैं, उसमें लाइन से नहीं हो पाता है,
1: हाँ,
0: और उसमें रोपाई तो लाइनों में की जाती है,
1: जी।
0: लेकिन बुआई के समय छिटकाव से इसमें डालते हैं, और उसका जो बीज दर है उसको ध्यान रखें ज्यादा ना डालें उसमें।
1: जैसे ज्यादा घना ना हो
0: हाँ
1: पाए।
0: ज्यादा घना होना पाए।
1: अच्छा, मन कुछ खरपतवार भी निकल जाना तो ओकर कैसे नियंत्रण करें?
0: आप धान के नर्सरी में खरपतवार प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी होता है, अगर आप खरपतवार प्रबंधन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नर्सरी उच्च क्वालिटी की नहीं होगा, और इससे आपका काफी नुकसान हो जाता है। तो
1: अच्छा।
0: आप किसान भाई ध्यान रखें, नर्सरी डालने के 2 दिन के अंदर ही पिटला क्लोर 37.5% का लगभग 16 ग्राम मात्रा 250 ग्राम बालू मिला करके उसको,
1: बालू में?
0: हाँ बालू मिलाकर
1: अच्छा।
0: 16 ग्राम मात्रा पिटला क्लोर की 250 ग्राम बालू मिला करके उसे 1 बिश्वा के दर से अगर डालते हैं तो कोई खरपतवार नहीं होता है।
1: मतलब छिड़काव कर दे।
0: हाँ छिड़काव कर, छिड़काव के हाँ मुड़काव उसको कर दीजिए, और नमी होना चाहिए उस समय।
1: अच्छा।
0: हाँ दूसरे या तीसरे दिन इसमें जो है कोई खरपतवार आपको 1 महीने तक नहीं उगेगा। और
1: अच्छा।
0: जल प्रबंधन, आपका गर्मी का महीना है तो किसान भाई आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई करते रहें और शाम के समय करें।
1: अच्छा, तो मैंने का नियमित रूप से वो के प्रतिदिन करें पड़ी
0: जी,
1: कि नमी के
0: नहीं
1: देखते हुए?
0: नमी को देखते हुए करें आप, दूसरे तीसरे दिन जैसे आवश्यकता हो नमी होना चाहिए, और हमेशा सिंचाई शाम के समय ही करें।
1: अब पानी रुका है ना ऊपर,
0: हाँ
1: मतलब
0: पानी
1: पानी
0: रुकने ना
1: निकल जाए।
0: पाए। जी।
1: अच्छा, रोग प्रबंधन बदे का करें?
0: अक्सर देखा जाता है कि नर्सरी में जो है प्राय खैरा रोग और सफेद रोग का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है,
1: अच्छा।
0: तो ऐसे में किसान भाई ये सुनिश्चित कर लें कि आपके खेतों में अगर जिंक की कमी है या आयरन की कमी है तो दोनों बीमारी प्रचंड रूप से होता है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे में अगर आपको खैरा की संभावना है तो इससे पहले आप अगर जिंक सल्फेट डाल दे रहे हैं तो नहीं होगा, अगर नहीं डाले हैं तो 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं 4-5 दिन के अंतराल पर, तो निश्चित तौर पर आपका जो है खैरा रोग समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर सफेद रोग है तो 2.5 ग्राम जो है फेरस सल्फेट को 20 ग्राम यूरिया में प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो सफेद रोग भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से किसान भाई खैरा रोग और सफेद रोग का नियंत्रण करके अच्छी नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो ये कुल कैले के बाद कैसे किसान भैया लोग जाने कि हमारी नर्सरी अब तैयार हो गए हैं रुपए में देखे?
0: लगभग 25 दिन की नर्सरी, 25 दिन की नर्सरी, 25 से 28 दिन की नर्सरी अगर हो गया बुआई के बाद तो
1: अच्छा।
0: तैयार होनी, मतलब वो मान लिया जाता है कि तैयार हो गया, इसके बाद उसकी रोपाई कर दे। बहुत ज्यादा अगर आपकी नर्सरी लेट हो जा रही है,
1: कभी कभी विलंब हो जा रहा
0: विलंब हो
1: है,
0: जाती है, तो
1: बरखा नहीं मिलन समय से।
0: हाँ तो ऐसे में उसकी वृद्धि और विकास जब आप मुख्य खेत में लगाते हैं जहाँ रोपाई करते हैं तो उतना अच्छी से वृद्धि और विकास नहीं होती है। तो वैज्ञानिक अनुशंसा है कि ऐसे में किसान भाई जो है सही समय पर जो है आप जो है नर्सरी निश्चित तौर पर निकाल करके और उसको अपने जहाँ आप रोपाई करना है वहाँ आप रोपाई
1: स्थापित
0: करें।
1: करें, ओके, हैं,
0: जी
1: बुआई
0: जी
1: कह दें।
0: जी

0: डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी, आप हमारे पंचायती में ना और ये जो धान का नर्सरी तैयार कर रहे के हो, एक विषय में जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के, ये जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। पंचो, देखा भाई, धान का नर्सरी डाले बदे के जो तैयारी करे के बात रहा ना, डॉक्टर रुदल प्रसाद चौधरी भैया देखा कितना बढ़िया फरिया के बताऊँ
1: बहुत
0: ना।
1: फरियाक बतीलन भैया।
0: अब भाई ए हिसाब से अगर हम चलल जाए इनके राय से, इन जो सलाह देत हूँ, तो अपन उत्पादन भी बढ़िया हुई जल्ला ना। तो जब बढ़िया उत्पादन हो जाला ना, तो देखा मन बड़ा गदगद रहला हो,
1: मन
0: चाहे
1: बड़ा
0: खेती किसानी हो, चाहे कोनो काम
1: कुछ
0: हो,
1: भी
0: रोजी
1: हो
0: रोजगार
1: तो
0: हो।
1: मन भी लगला और अब एक प्रकार से परिवार के बीच चलला। आ देखा हो बात बात कही तो देखा हो गल हो। अब हमने के पंचायती में देखा वही मन मनसान,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो देखा मन मनसान में देखा अमलेश कुमार पांडे का एक गवनई हो गंगा गीत।
0: सुनवा दा पंच
1: और
0: भैया लोग आनंद ले। हाँ
1: उसे पहले ही सनेस है, सनेस है, उसके बाद
0: हाँ
1: इनका गवनई हुई।
2: हमारी
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: बड़ा नगद का गंगा की तरह मन बड़ा गदगद हो गल भैया।
1: अरे भाई बधैया बज गया लब का, गदगद
0: हाँ
1: मने जौन हो यह ना पहचान होले कि दुआरे पे बधैया बजे। तो भाई देखा एमन जौन बखान रहा है गंगा जी के, है ना। बाकी तो एक बात बाय ना कि ऐसे ही इ पवित्रता बनल रहा है, इस सोच भी अपने अंदर लिया खी ना है कि खाली आनंद ले रहला गाना सुन के ओकरे बाद भी भाई कुल भुलाए गेला, है
0: नहीं नहीं
1: ना।
0: ओके अपने जीवन में लिया
1: जब
0: हो कि
1: गंगा
0: बनी।
1: मैया उन्हें कहत हुआ ना तो माई का अचरा देखा गंदा ना हो पावे, है जौन व्यवस्था कैल जात हो कि साफ सफाई का, मन साबुन मत लगावा, मन पशु चौवा मत नहावा, मन बर्तन मत माजा, एक माना के पड़ी जल ना।
0: देखा ये तो बतकई हो गल। अब
1: भैया
0: देखा हमने काली के कार्यक्रम के बारे में भी बता दे बोल जा
1: हाँ
0: पंच
1: हाँ
0: भुवन
1: पंच
0: के।
1: भैया लोगों ने बतावा।
0: देखा कल के बिहाने बिहाने जो 6:05 पे जो कार्यक्रम होला
1: हाँ
0: खेती के बात है
1: हाँ
0: एमन देखा हुई गर्मी की जुताई का महत्व ये विषय पे बात हुई
1: हाँ
0: और ये विषय पे जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह।
1: अच्छा। और सांझी के दिखाई जो अपन किसी जगह कार्यक्रम हो था ना, इमन देखा बतकही हुई कि बीज प्रौद्योगिकी का काम महत्व हो, डॉक्टर अर्चना सान्याल से सतीश कुमार यादव को देखा बतकही हुई जल्ला ना, नगद के बतकही हो एकदम।
0: अरे भैया हम तो कहीं दिखाना है
1: हाँ
0: कि ये तो मतलब बता दिला जोन भी जानकारी दिला हाई जोन आनी बरखा आल बान है
1: हाँ हाँ
0: तो लोग सोचते होंगे कि फिर देखा वही छोड़ दे का जरूरत है गुरु बछरू की है वही गंदगी लोग कैले रहला लेकिन ओके साफ सफाई रखे जरूरत है कैसे अपन चौवा बड़ा परेशान रहना जोन माछी हौके में जोन
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपने तो मच्छरदानी लगा के सूझ जावे, हैं
0: यही समय देखा
1: पशु चौवा
0: बीमार
1: के
0: भी
1: भी
0: आदमी
1: ध्यान देवे के
0: होला।
1: हो। हम कही चलो चले के बेला हो गई, पंच भैया लोगों से अब आज्ञा लेवल जाता। पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: अभी किसान भाई सुने थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म थ्री इडियट्स से। आवाजें हैं शान और शांतनु मोहित्रा की। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोहित्रा की।

अभी आप शान और शांतनु मोहित्रा की आवाजों में थ्री इडियट्स का गीत सुने थे। अब आए सुने सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम आजा नचले। गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीतकार सलीम सुलेमान।

अब आइए अरिजीत सिंह की आवाज में एक गीत सुने। फिल्म का नाम है बाजार। शब्द रचना शब्बीर अहमद की है, धुन बनाई है कनिका कपूर ने।

फिल्म बाजार किसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों संबंधी सूचना। कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार चंदन पुत्र छोटेलाल निवासी दिनदासपुर पोस्ट जनसा थाना जनसा जनपद वाराणसी दिनांक 18 मार्च 2026 दिन बुधवार रात 8 बजे से कहीं लापता हो गए हैं। इनके हुलिया इस प्रकार है। उम्र 26 वर्ष कद 5 फीट 5 इंच रंग गेहुआ है। ये सफ़ेद शर्ट और जींस पैंट पहने हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष जनसा

कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार सीमा सिंह पुत्री राजबीर सिंह निवासी नाथपुर पोस्ट भुल्लनपुर जनपद वाराणसी कहीं खो गई हैं। इनकी हुलिया इस प्रकार है, उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करने की कृपा करें। कार्यालय कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार धीरज कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी SH 13/10 M1 तरना शिवपुर जनपद वाराणसी कहीं खो गए हैं। इनकी हुलिया इस प्रकार है, उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना शिवपुर को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों संबंधी सूचना अब समाप्त हुई। ये आकाशवाणी वाराणसी है। 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने

0: जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय एक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: विदेश के किसानों के

0: मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खिलानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर

0: आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। यह गीत हमने लिया है फिल्म संगम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप फिल्म संगम का गीत सुन रही थी। आवाजें थी लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की। अब आइए सुरेश वाडकर आशा भोसले को सुने फिल्म ईमानदार में। गीत लिखा है प्रकाश मेहरा ने और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई आवाज ने लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार का लिखा है गीत। संगीत रचना हृदयनाथ मंगेशकर का है। फिल्म का नाम लेकिन।

अब ऐसने फिल्म आवार की कह गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की हैं। रचना आनंद बख्शी की है और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: और अब कार्यक्रम के अंत में ऐसे नहीं, लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम आन मिलो सजना।
1: तो हम चलते हैं।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंगम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं आराधना विश्वकर्मा। आज आप सुनेंगे इनके गाए भजन। सबसे पहले आए सुने इनकी आवाज में बुले शाह की ये रचना।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं आराधना विश्वकर्मा। अब आए सुनहनी की आवाज में मेरा भाई की लिखी ये भजन।

अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। कलाकार थी आराधना विश्वकर्मा। इसी भजन के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम में 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि की 8:15 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
1: हंसो मत, बोलो

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेत्री का गीत। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। मजरूह सुल्तानपुर ने इस गीत को लिखा था, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए फिल्म प्रेम रोग का एक गीत सुने। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आइए लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत सुने। फिल्म का नाम हेर रांझा, संगीतकार हैं मदन मोहन।

श्रोताओं, हम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आए सुने लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह को फिल्म वारिस। गीतकार हैं परमा मलिक और संगीतकार उत्तम जगदीश।

अभी आप लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में फिल्म वारिस का गीत सुन रहे थे। अब आइए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुने फिल्म भींगी पलकें। गीतकार हैं यमजी हसमत और संगीतकार जुगल किशोर।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बात।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा

0: सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
4: रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

0: सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स

0: 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens. Says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the

0: कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मगरबी बंगाल में वजीर शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मरदमशुमारी के प्रिंसिपल असरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मरदमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वज़ीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरदमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद व शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 टीएमटी पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
0: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़े किया कि फैसला सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की जरूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सजा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और जेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज या ज्यादा से ज्यादा अगले रोज रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का जखीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ इसकी

0: काम कर रहा है। मजीद पेचीदगी लेबनानी नुक्ता नजर से भी है। तेहरान सभी इलाकाई महाजों का अहाता करते हुए बाहमी मफाहमत नामे पर जोर दे रहा है, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयाँ और नकले मकानी अहकाम इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पीटीएम कारकुन फरीदुल्ला अफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतल्लिक अपने रिकॉर्ड के ज़िम्न में ताज़ा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कांग हाईजेन की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट के चंडीगढ़ में जारी दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रन का निशाना रखा है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे क्वालिफायर के आज हो रहे मैच की फातिह टीम का मुकाबला इतवार के रोज फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए चार सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुने अंजुमन कार्यक्रम। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे अपने रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल के साथ। नमस्कार। रात की शांति, ठंडी हवा और तन्हाई में गैर फिल्मी गीत और दिल को छू लेने वाली गजलों का ये सफर हम आपके साथ साझा करने आए हैं। आइए शब्द, सुर और एहसास की इस महफिल में साथ चलते हैं और सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, गजलों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दिल के बेहद करीब होती है। हर शेर, हर मिसरा जैसे किसी अपनों ने कहा हो। आइए अब खूबसूरत नज्म के साथ आगे बढ़ते हैं। इस नज्म में मोहम्मद की नरमी और जिंदगी की सच्चाई का अनोखा संगम है। आवाज पंकज उदास की।

रात के इन सन्नाटों में अक्सर हम अपने आप से बात करते हैं, कभी बीते पलों से, कभी अपने सपनों से। संगीत इस बातचीत को और गहरा कर देता है। आइए अब एक दिलकश रचना सुनते हैं जो मन में ठहर जाने वाला एहसास छोड़ता है। फनकार हैं गुलाम अली।

श्रोताओं, शब्दों का सौंदर्य और धुन की कोमलता यही इस रचना की पहचान है। रात के चादर तले कुछ आहटें रुक रुक कर चलती हैं, जैसे कोई अनकही बात चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हो। सुनते रहिए कार्यक्रम का ये अंतिम गजल, आवाज मेहती हसन की है।

0: Abdelosire.
1: श्रोताओं, आज की रात्रि यात्रा यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह अंजुमन की इस महफिल में आपके मन को सुकून दिया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रात, नई गजलों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।
2: जलते हैं
0: तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कुछ पत्ता हिलाया, पत्ता हिल गया, आहट आहट को चाप कहते हैं। कि तेरी हर चाप से चलते हैं ख्यालों में चरागीनी खुशी कि शायद महबूब आ गया।

अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी आपकी कसम। अब आइए लता मंगेशकर को सुने, फिल्म है तीसरी कसम। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

ये गीत हम लिया है फिल्म उत्सव से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। बसंत देव ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म उत्सव का गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, गीतकार थे वसंत देव और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में संतोष आनंद का लिखा है गीत, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मेरी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आए सुने क्लैरिनेट वादन, कलाकार हैं गोपाल दास, राग है जोग, संगत कलाकार हैं आपके साथ तबले पर अनूप कुमार बनर्जी।

0: अभी आप सुने थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में क्लैरिनेट वादन। कलाकार थे गोपाल दास, राग था जो। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अनूप पर बनर्जी। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार

सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।